सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल पर 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026 ईस्वी। सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः की 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा

0: माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, भक्ति मन की निर्मलता है। भक्ति वह शक्ति है जो मन के विकारों को शांत कर देती है, विचारों को पवित्र बनाती है और जीवन में प्रेम, करुणा और संतोष का प्रकाश भर देती है। धर्म हमें जोड़ता है, आध्यात्म हमें भीतर से मजबूत बनाता है और प्रभु का स्मरण हमें हर कठिनाई में आशा देना सिखाता है। तो आइए प्रभु स्मरण के साथ आरंभ करते हैं आज का ये पावन सफर। हर शुभ कार्य से पहले जिनका स्मरण किया जाता है, जो विघ्नों को हरते हैं, बुद्धि और विवेक के दाता हैं, वे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं। गजानन की आराधना हमें यह संदेश देती है कि जीवन में धैर्य, विनम्रता और ज्ञान कितना आवश्यक है। जहां गणपति का वास होता है, वहां मंगल और सुख स्वयं चले आते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की पावन आरती।

मर्यादा, सत्य, त्याग और आदर्श जीवन की जब भी बात होगी, प्रभु श्री राम का नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। श्रोताओ, राम केवल एक नाम नहीं है, राम जीवन जीने की मर्यादा है। राम वह विश्वास है जो दुख में साहस देता है और सुख में विनम्रता। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धरु जेह देहरी द्वार, अर्थात राम नाम ऐसा दीप है जो जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। आइए प्रभु श्री राम की महिमा का स्मरण करते हैं प्रभु की इस स्तुति से।

श्रोताओं, भोलेनाथ जो सरल भी हैं, संहारक भी, जो कैलाशपति हैं, फिर भी अपने भक्तों के लिए सहज और करुणामय हैं। देवों के देव महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति और शांति साथ साथ चल सकती है। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, गंगा और गले का सर्प प्रकृति और जीवन के संतुलन का प्रतीक है। और जब बात बाबा अमरनाथ की हो, तो हिमालय की वादियों में हर हर महादेव की गूंज आत्मा को भक्ति से भर देती है। तो आइए भोले शंकर की महिमा का गुणगान करती ये भक्ति रचना सुनते हैं।

श्रोताओं, अटूट भक्ति, अद्भुत शक्ति और पूर्ण समर्पण का नाम है हनुमान जी। संकट मोचन हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि यदि मन में विश्वास और प्रभु के प्रति समर्पण हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं रहती है। हनुमान जी का स्मरण भय को दूर करता है और आत्मविश्वास जगाता है। तो आइए बजरंग बली का गुणगान करते हुए सुनते हैं ये भक्तिमय रचना।

वृंदावन की गलियों में मुरली बजाने वाले कान्हा और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण। श्रोताओं, कृष्ण प्रेम भी हैं और नीति भी, माधुर्य भी हैं और जीवन का गहरा दर्शन भी। उनकी बांसुरी मन को मोह लेती है और गीता का उपदेश जीवन को दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसी दिव्य संदेश के साथ सुनते हैं श्री कृष्ण की ये मधुर भक्ति रचना।

प्रिय श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा के सुरों से सजे कार्यक्रम वंदना में आज बस इतना ही। ईश्वर का स्मरण हमारे मन को शांति, विचारों को पवित्रता और जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करे। प्रभु की कृपा आपके घर आंगन में सुख, समृद्धि और मंगल का प्रकाश बनाए रखे। चलते चलते बस इतना ही। मन मंदिर में ज्योति जलाए रखना, प्रभु नाम से जीवन सजाए रखना। सुख आए तो विनम्र बने रहना, दुख आए तो विश्वास बनाए रखना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दीजिए संजीव कालिया को अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन। विषय है जीवन के सिद्धांत। वाचक स्वर शिवदयाल शर्मा का है।
1: जीवन के सिद्धांत। जीवन में कुछ बातें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि सिद्धांतों पर चलना मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। अथवा सिद्धांतों पर चलकर दुनिया से हारना झूठ के दम पर जीतने से कई गुना बेहतर है। जीवन में हार या जीत से भी बढ़कर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह आपके सिद्धांत है, मानवीय मूल्य है। सिद्धांत अर्थात सच्चाई का रास्ता, श्रेष्ठता का पथ और सच्ची मानवता जो आदर्शवादिता एवं शास्त्रानुकूल परिपथ है। जितने भी हमारे महापुरुष और दार्शनिक हुए हैं, उनकी महानता के पीछे बस एक ही कारण था कि उन्होंने जीतने के बजाय हारना स्वीकार किया, परंतु अपने सिद्धांतों का परित्याग कभी नहीं किया। भले ही वे कम बोलते थे, मगर सटीक और नपेतुले शब्द जो सत्य हो वही बोलते थे, क्योंकि कम बोलना कोई अज्ञानता नहीं है, बल्कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वे मितभाषी ही हुए हैं। पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं, यानी बचपन से ही उनका कम बोलने का स्वभाव होता है। इसका एक सर्वमान्य सिद्धांत है। संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः, अर्थात महान व्यक्ति स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए सत्य का मार्ग सुगम तो नहीं होता, निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट जरूर होता है। पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, कदम कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर इन सब के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रत्येक जुबान पर आपके ही किस्से होंगे। अतः सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। यदि हमारे सिद्धांत पूर्ण रूप से मानवीय मूल्यों अथवा वेद शास्त्रों पर आधारित है, तो हम जान सकते हैं कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसको सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए ही बनाया है। हम उस अर्थ को समझ सकेंगे, न कि अपने मतलब के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे। हम जितना अधिक सच्चे सिद्धांत का मनन और चिंतन करेंगे, उतना ही परा अपरा शक्ति को पहचान भी सकेंगे। अतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आप सिद्धांतवादी हैं तो जीत से भी ज्यादा चर्चे तो आपकी हार के होंगे। उदाहरण से हम विचार करें तो पाएंगे कि महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि इस बात का जीता जागता प्रमाण है। सिद्धांतवादी होने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अपने नियमों मूल्यों का पालन करता है और अपनी प्रत्येक क्रिया के प्रति सतर्क और ईमानदार रहता है। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति सच्चा एवं जिम्मेदार जीवन जी

0: अतः व्यक्ति के सिद्धांतवादी होने या न होने की आवश्यकता समुचित रूप से उसके व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, मान्यताओं और जीवन दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सिद्धांतवाद व्यक्ति के विचार और मूल्यों के प्रति उसके गहरे या स्थायी विश्वास का प्रतीक होता है, जो उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अतः सिद्धांतवादी व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में देर से ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। सिद्धांतवादी होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस जीवन में सिद्धांत नहीं, वह जीवन कभी भी श्रेष्ठ एवं एक आदर्श नहीं कहा जा सकता। जीने को तो पशु भी अपना जीवन यापन करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, बच्चे पैदा करना तो वे भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर् नराणाम् धर्मो हि तेषां मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात कोई सिद्धांत या नियम नहीं है तो मनुष्य पशु तुल्य है।
1: श्रोतो, अभी आप आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद सवेरे 7:10 पर खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी होगी बीजोपचार के लाभ विषय पर। मानस गान आप सुनेंगे सवेरे 7:20 पर। सवेरे 7:30 पर दैनिक कार्यक्रम होगा सुप्रभात। इस कार्यक्रम में सामाजिक विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही आज हम आपको आकाशवाणी के 90 वर्ष का अनुभव विषय पर रेडियो श्रोता मनीष कुमार से नवीन सिसोदिया की बातचीत सुनवाएंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:45 पर आप कुछ भक्ति रचनाएं सुनेंगे। प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम रिले होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे प्रातः 10:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे प्रातः 11:00। कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत दिन में 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें सुनिए दिन में 12:30 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 12:50 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी होगी ग्वार की उन्नत खेती व किस्में। महिला जगत कार्यक्रम में दिन में 1:05 पर जानकारी के विषय रहेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, घर को ठंडा और आरामदायक रखने के उपाय, फूड फॉर लीवर हेल्थ, फेक और फॉरवर्ड मैसेज से सावधान विषयों पर। फिल्म संगीत सुनिए दिन में 2:30 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे दोपहर बाद 3:00 से। नौजवान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5:00। कर्ण वर्मा आपके साथ रहेंगे। जानकारी के विषय होंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, रंग रंगीला हमारा राजस्थान, मदरसा आधुनिकीकरण और ग्लोबल वार्मिंग और आज के इतिहास की बात होगी। सिराई की प्रोग्राम का वक्त रहेगा 6:05। चौपाल कार्यक्रम होगा 7:00। जानकारी होगी मृदा में वायु संचार, धान की पौध में कीट नियंत्रण, माटी जांच का सही तरीका और मौसम और बाजार भाव की जानकारी। फिल्म संगीत सुनिए 7:45 पर और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:00। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें आप सुनेंगे 9:15 पर। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा 9:30 पर।

0: और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से होगा रात्रि 10 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8:30 पर। श्रोताओ, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुं अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य भवननिर्माणस्य सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः बीएसएफ इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगत पञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंकसत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अन्तिमां तिथिं जून मासस्य 7वां दिनांकपर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6वां दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन

0: अपराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारम् एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढ़े भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् अष्टषष्ट्यधिकत्रिशतं धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज

बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7:10 हुए हैं। खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए आज उपयोगी जानकारी का विषय है बीजोपचार के लाभ। लीजिए सुनिए।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप भांत भांत की फसलां बीजा सावणी में, हाड़ी में और जायद में, तो जिकी भी आप फसलां बीजा मांगो अपने बीजोपचार देखो करना चाहिए। बीजोपचार आप हरेक फसल को करा तो भी अपने लाभ है जगह अच्छा मिल सके। तो मोटी सी बात आई है कि जिके भी आप फसल को उत्पादन लेवा तो भी वो बीज है जो एक महंगो उत्पाद हो। फसल उत्पादन के कुल खर्चे में से 20-30% तक एक लो बीज पर ही खर्च हो जाए। और इंग साग साग अच्छो और स्वस्थ फसल आपने प्राप्त करने खातर बीजा ने कीटा और व्याज से दूर रखना बहुत जरूरी है। जबकि शू कह के बीज बीजने से पहले आपने उपचारित करना चाहिए। भी जितना भी आपने किसान भाई जका बिजाई करे सावणी में, हाड़ी में और इंगे साग साग जायद में, तो जब तक अनुमान वही है अपने के भी 70% तक किसान है जका बीजोपचार या कह सक भी करे भी कोनी आप। और 20-30% तक जकी निजी संस्था है बांशू या सार्वजनिक संस्था से ज्यादातर भाई जो को बीज खरीदे और वो बिना उपचारित करो बीज हो है। तो अपने देश में यह कह सभी अनुमान वही है कि लगभग 80% बीज है जो बिना उपचारित किए ही किसान भाई लोग जका बिजाई करे। जका विकसित देशों की तुलना करा तो भी मैं 100% तई किसान है जका मांगा उपचारित करेड़ा बीज है जो बीजे। तो बीज उपचार करने शू बीज की मृदा और बीज जनित व्याधियां शू रक्षा तो करे ही करे। इंगे अलावा अंकुरित पौधे की शुरुआत की बढ़वार में रस चूसने वाले कीड़ा शू भी रक्षा करे, फिर भी किसान है जका अपने बीज उपचारित करे कोनी तो माने बीज उपचार से जो करना। किसान भाई बात अब बीज उपचार करने को के उद्देश्य है। बीज उपचार को उद्देश्य न केवल बीज और मृदा जनित कीटाशु या व्याधियाशु बांगी रोकथाम करना है, बल्कि जीवित परंतु सुप्त जीवाणुओं के लेप करण खातर वो अपने प्रयोग है जको करनो पड़े। जको बीज अंकुरण के बाद अंकुरित बीज ने एक स्वस्थ और ओज पूर्ण विकसित पौधे के खातर नाइट्रोजन का भी ने भरपूर मात्रा में मिले, जैके शू कह के बूंटो अच्छो स्वस्थ हो सी और भी पर फूल है फल है जगह चोखा लगेगा और अपनी फसल को उत्पादन है जगह में बढ़ोतरी होगी। तो बीज उपचार को वो मोटो सो उद्देश्य हो। बीज उपचार के लाभ की बात करा तो बीजा को अंकुरण प्रतिशत जको बढ़ जाएगो और अंकुरित बीज में समरूपता भी आ जाएगी। फसल ने मरदा एर बीज जनित कीड़ा और व्याधियां शू जको है बचाव हो जाएगो। दलहनी फसलों के बीजा ने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता और उत्पादकता में बढ़वार हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ और एक सार विकास है जो को बुंटे होगा। उन्नत पादप संख्या जो की बढ़ जाएगी जैके शू फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी और सागे सागे बुंटो स्वस्थ और पूर्ण विकसित बुंटे की जड़ा जकी होगी। उपचारित बीज बीजने शू कीटनाशी और फफूंदनाशी की स्प्रे जकी कम हो जाएगी, जैके शू फसल उत्पादन पर खर्चो जको की कम हो जाएगो। पौधांगे खातर लाभदायक कीटा की भी रक्षा जकी हो जाएगी। तो इंगे अलावा फसलों की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करने और फसलों पर कीड़ा और बीमारियों को प्रकोप कम शू कम होगा। इन उद्देश्य शू बिजाई शू पहला अपने 100% बीजोपचार करना बहुत ही जरूरी हुआ है। बीजोपचार करते टाइम अपने एक सावधानी रखनी कि बीजोपचार करते टाइम FIR यानी फकीरा के नाम शू कर्म है जो अपने रखनो। तो इनको मतलब है पहल पोता अपने फफूंदनाशक दवाई शू बीज उपचारित करनो, बिंगे बाद कीटनाशी दवाई शू बीज उपचारित करनो और अंत में अपने कल्चर शू बीज है जो उपचारित करनो। तो इन तरीके से अपने जगह बीज उपचारित करांगा तो अपने बीज उपचार से लाभ होगा। अब बात करांगे बीज उपचार अपने क्यों करना पड़े। बीज निर्जमीकरण की बात करा कई रोगाणु और कीड़ा जका या बंगा प्यूपा जका बीज की सतह पर जका पाया जाए तो अन्य हटाने के वास्ते जकी प्रक्रिया हुआ बिन बीज निर्जमीकरण कह। किसान भाई बीज कीटाणु शोधन की बात करा तो की रोगाणु और कीट जका बीज के अंदर पाया जाए तो आ कीटा रोगवाणु ने नष्ट करने खातर बीज कीटाणु शोधन है जो कहलावे। बीज संरक्षण की बात करा बीजा और अंकुरित पौधा ने मृदा में पाए जाने वाला हानिकारक जीवाशु बचाणो बीज संरक्षण है जो कहलावे। तो इन सब है जका बीज उपचार अपने करनो बहुत ही जरूरी हुआ है। अब बात करें बीज उपचार की विधियां तो इनमें एक तो जैविक विधि है, ई विधि शू राइजोबियम कल्चर शू आप बीजा ने जो उपचारित करा। एक रासायनिक विधि है जका मैं ई विधि में जो एक तो रसायन के पाउडर ने रोटरी ड्रम है।

0: मिला दें हाँ जैसे बीज जनित संक्रमण न रोकण खातर आप रसायन को प्रयोग है जो करा जिया के थायराम है कैप्टान है या बोर्डो मिक्सचर है आशू और इनके अलावा तरल रूप में भी बहुत सी दवाइयाँ हुए तो जगह छू के आप बीजा को उपचार है जो कर सका इन तरीके से आप जकी भी फसल बीजा भी मैं बीजो उपचार करना बहुत ही जरूरी है फसल छू अच्छो लाभ है जो ले सका प्रभु खेत का नहीं चालू राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओ खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में अभी प्रगतिशील किसान भाई उपयोगी जानकारी सुन रहे थे बीजोपचार के लाभ विषय पर। लीजिए अब सुनिए भंवरलाल सोलंकी के स्वर में एक लोक भजन।

श्रोताओं, अभी आपने भंवरलाल सोलंकी और साथियों के स्वर में लोक भजन सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 267 का पाठ।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्रीराम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए, जिनकी असंख्य वानर सेना के लिए जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हा राम हा राम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। यह सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ, जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वह राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मान लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

से भाग 267 का पाठ स्वर था ए हरिहरण का। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हो चुके हैं और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। और आज के अंक में मैं आपका रेडियो मित्र संजीव कालिया उपस्थित हूं। श्रोताओं, आज हम बात करें परिवार की और छोटे परिवार की। छोटा परिवार यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि सुखी जीवन का आधार है, समाज की आवश्यकता और राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है। कहा भी गया है कि छोटा परिवार सुख का आधार। श्रोताओं, आज के समय में जब महंगाई बढ़ रही है, संसाधन सीमित होते जा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार कठिन होती जा रही है, तब छोटा परिवार केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि एक समझदारी भरा निर्णय बन चुका है। परिवार जितना छोटा होता है उतना ही बेहतर ढंग से उसका पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार संभव हो पाते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करें और जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तब आय सीमित और जरूरतें असीमित हो जाती हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर ध्यान कम हो जाता है, आर्थिक तनाव बढ़ जाता है और परिवार में मानसिक दबाव पैदा होने लगता है। बड़ा परिवार देखने में भले ही भरा पूरा लगे लेकिन उसके साथ अनेक कठिनाइयां जुड़ी होती हैं। परिवार बड़ा होगा तो खर्च भी बढ़ेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, हर चीज पर अधिक खर्च होगा और सीमित आय में सभी जरूरतें पूरी करना कठिन हो जाता है। अधिक बच्चों के कारण माता पिता प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं और संस्कार भी नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चों का मानसिक और शैक्षणिक विकास प्रभावित हो जाता है, स्वास्थ्य समस्याएं भी आती हैं। लगातार गर्भधारण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और कमजोर स्वास्थ्य पूरे परिवार की खुशियों को प्रभावित करता है। और श्रोताओं, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो रोजगार और संसाधनों पर भी उसका दबाव बढ़ जाता है और यही कारण है कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। परिवार छोटा होगा, बच्चे कम होंगे तो कम बच्चों पर माता पिता अधिक ध्यान दे सकते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य दिया जा सकता है। छोटे परिवार में भोजन, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर रहता है, परिवार के सदस्य मानसिक रूप से भी अधिक संतुष्ट रहते हैं। कम खर्च होने से बचत बढ़ती है, परिवार में आर्थिक स्थिरता आती है, परिवार जो है वो भविष्य के लिए योजनाएं बना सकता है और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है। छोटा परिवार महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अवसर भी देता है श्रोताओं। और जब महिला स्वस्थ और सशक्त होगी तभी परिवार और समाज मजबूत होगा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, केवल संख्या पर नहीं। और यदि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो पानी की कमी, बेरोजगारी, प्रदूषण, आवास की समस्या और प्राकृतिक संसाधनों का संकट बढ़ जाएगा।

इसका हम अनुभव भी करते हैं। लेकिन यदि परिवार छोटे होंगे तो देश के संसाधनों का सही उपयोग होगा, हर व्यक्ति को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसलिए छोटा परिवार केवल व्यक्तिगत सुख का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित का भी विषय है। हम बातें और भी करेंगे परिवार की, बच्चों की, लेकिन पहले एक गीत आपको सुनवाते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने हम हैं राही प्यार के फिल्म का ये नगमा सुना अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वर में। श्रोताओं, आकाशवाणी केवल ध्वनि का माध्यम नहीं है बल्कि भावनाओं, संस्कारों, स्मृतियों और समाज को जोड़ने वाला एक आत्मीय सेतु भी है। पिछले 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं के सुख दुख, उत्सव, संघर्ष और संवेदनाओं को अपनी आवाज दी है। रेडियो की मधुर तरंगों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने न केवल जानकारी और मनोरंजन दिया है बल्कि लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनकर उनसे आत्मीय रिश्ता भी कायम किया है। आज आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अविस्मरणीय यात्रा के अवसर पर हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे श्रोता से जिनका आकाशवाणी से जुड़ाव केवल सुनने तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह उनके जीवन की यादों, भावनाओं और अनुभवों का हिस्सा बन गया है। तो लीजिए सुनिए रेडियो श्रोता मनीष कुमार से नवीन सिसोदिया की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी अपने 90 वर्षों के इतिहास को पूरे भारत में धूमधाम से मना रहा है। इसी कड़ी में देश के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों पर वॉकेथॉन, मैराथन और कॉन्सर्ट्स जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। हमने भी इसी क्रम में आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में आज हमारे एक श्रोता को आमंत्रित किया है जिनका रेडियो से काफ़ी लगाव रहा है, इनके परिवार का आकाशवाणी के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार ये रेडियो से जुड़े और क्या इनकी यात्रा रही है। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद जी।
1: मनीष जी, किस प्रकार आपका रेडियो से जुड़ाव हुआ?
2: रेडियो जो है सर, हमारे पिताजी से विरासत मिला है। पिताजी रेडियो में लिखते थे, रेडियो के टच में थे
1: जी।
2: तो रेडियो में हर महीने उनके टॉक शो, वार्ता वगैरह होती थी, तो वो वहीं से हम सुनते आ रहे हैं
1: जी,
2: उन्हीं को देख के।
1: तो ये कौन से सन की बात है जब आप
2: ये आकाशवाणी जब नया ओपन हुआ ही था उसके बाद की बात है
1: जी,
2: तब से हम इसके रेडियो के टच में ही रहे।
1: हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी जब इसको सुनते थे तब वो इसमें क्या क्या क्या चीजें ऐसे सुना करते थे और क्या आपको उसको सुनने की अनुमति प्राप्त थी?
2: हाँ जी, अनुमति थी। हाँ। एक निश्चित टाइम होता था कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक सुनना है, बाकी अपना काम करो। और फादर क्या है, आकाशवाणी में राजनीतिक वार्ताएं होगी
1: जी,
2: कोई नाटक वगैरह होगी,
1: फिल्म संगीत
2: रुचि लेते। हाँ, फिल्म संगीत से भी रुचि थी उनकी, पुराने जो संगीत है उनसे
1: जी। जी, आपने अगर हम कहें जब होश संभाला उसके बाद से आपने रेडियो सुनना कब से शुरू किया?
2: रेडियो सुनना मैंने चालू किया था सर, 10वीं से शुरू किया था मैंने
1: जी,
2: 10वीं से सुनते थे।
1: आपके क्या मुख्य विषय थे जो आप इसमें सुनते थे?
2: हमारा लगाव तो देखो जी संगीत से था
1: जी,
2: विविध भारती सुनते थे, ऑल इंडिया सुनते थे, आकाशवाणी सुनते थे, आकाशवाणी की चौपाल होगी, ये सैनिकों के लिए प्रोग्राम हो गया, युवाणी हो गया
1: जी,
2: ये सभी हम कंटिन्यू सुनते थे, इसे लगाव रहा था मैं
1: जी। आपको क्या लगता है कि रेडियो जो है वो अन्य संचार के माध्यमों से किस प्रकार अलग है, क्या इसके फायदे आपको नजर आते हैं?
2: रेडियो जो है एक विश्वसनीय चैनल है, इस पे जो बात कही जाती है उसमें कोई किंतु परंतु का नहीं है। जो इसमें प्रोग्राम आते हैं वो एकदम स्वस्थ होते हैं, ज्ञान से उत्प्रोत होते हैं
1: जी,
2: और रेडियो पर जो बात बोली जाती है एकदम सटीक बोली जाती है, शालीनता से बोली जाती है, जिसको बार बार सुनने का मन करता है
1: जी। आपको ऐसा लगता है जीवन में आपने रेडियो से क्या क्या सीखा?
2: रेडियो से सर एक तो ये सीखा कि जीवन में शालीनता से बात करनी चाहिए
1: जी,
2: टाइमिंग होनी चाहिए
1: जी,
2: जो टाइमिंग है जिस टाइम पे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचो, टाइमिंग बहुत जरूरी है
1: जी, बिल्कुल जरूरी है। और रेडियो तो टाइम का पाबंद रहा है, सुबह अगर 5:53 पर रेडियो अगर शुरू होता था, एसटी बजती थी तो वो उसका निश्चित समय
2: निश्चित समय था।
1: हाँ, ऐसा होता था कि आप सुबह उठकर पहला काम रेडियो को चलाने का ही करते?
2: नहीं नहीं, वो हमारा काम तो देखो जी, हम तो उस टाइम पढ़ते थे, हमारे पिताजी सुनते थे।
1: हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ में एक पुराना रेडियो भी है
2: जी,
1: और आपके पास एक लाइसेंस बुक भी है।
2: हाँ जी, पहले

0: लाइसेंस बुक के
1: लाइसेंस,
0: बारे में हमें आप कुछ बताइए।
1: ये पहले सर ये लाइसेंस होता था रेडियो चलाने के लिए,
0: जी
1: जो हर महीने इसमें क्या स्टैंप लगती थी पोस्ट ऑफिस से जाके, वो इस बात की अपनों को आज्ञा देती थी कि भाई आप रेडियो को यूज कर सकते हैं।
0: जी, और ये स्टैम्प जो है ये लगती थी तभी आपको अनुमति मिलती थी
1: हाँ
0: रेडियो
1: जी हाँ
0: सुन
1: जी,
0: पाने की।
1: मतलब एक निश्चित टाइम होता था इसका, उस टाइम के बाद ये स्टैंप लगवानी पड़ती थी आपको पोस्ट ऑफिस से जाके।
0: देखिए मनीष जी, ये जो आपके पास बुक है इस पे 1981-84 की मोहरें जो है वो लगी
1: जी
0: हुई
1: लगी
0: हैं।
1: है, हाँ जी हाँ जी,
0: इस बात को 40 साल हो गए,
1: 40 साल हो गए
0: 40
1: जब
0: से भी
1: ये
0: ज्यादा
1: आकाशवाणी की स्थापना
0: आपने
1: हुई थी।
0: इसको संभाल कर रखा है,
1: जी जी
0: क्या वजह है इस चीज की?
1: ये विरासत है जी अपनी पुरानी।
0: जी, आज जो जनरेशन है, जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो रेडियो क्यों सुने?
1: ऐसा है, रेडियो सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेडियो पे जो प्रोग्राम है शालीनता से होता है, सुनना चाहिए उनको, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे आकाशवाणी के जो प्रोग्राम होते हैं
0: जी
1: अपराध के खिलाफ हैं जो, या नशे के खिलाफ हैं जो, और अन्य कोई एक्टिविटी है उसके खिलाफ है, वो सुनना चाहिए
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि आपके द्वारा पेश किए गए प्रोग्राम में हम सुनते हैं अक्सर, तो उसमें ये इस तरह की बातें होती है, तो सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए।
0: आज भी आप रेडियो सुनते हैं क्या?
1: जी
0: आज आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं सर?
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम तो जर मैं हर तरह के प्रोग्राम जो भी आता है वो सब सुनता रहता हूँ कंटिन्यू।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है मनीष जी। कुछ लोग कहते हैं कि आज जो है रेडियो हम कम सुनते हैं, आज तो जमाना बदल गया है। हालांकि रेडियो भी अब सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित है, लेकिन इसके भविष्य के बारे में आप क्या देखते हैं?
1: रेडियो का भविष्य जो है बड़ा ही उज्ज्वल है।
0: जी
1: जो लोग कहते हैं कि रेडियो कम सुनते हैं, लेकिन आज भी आप देखोगे पुराने लोग हैं जो युवा पीढ़ी के भी लोग हैं, तो उनका उनके अंदर रेडियो का क्रेज है,
0: जी बिल्कुल।
1: वो चाहे किसी भी ऐप में हो, मोबाइल में हो या किसी में हो, वो जरूर सुनते हैं।
0: जी
1: और पहले का समय था जब आकाशवाणी की सूरतगढ़ नहीं था, तो हम विदेशी चैनलों पर निर्भर थे, हमें
0: हाँ
1: विदेशी रेडियो सुनने को मजबूर थे हम।
0: जी,
1: उसके बाद जब ये 22 फरवरी
0: फरवरी
1: 1981 में जब रेडियो आकाशवाणी सूरतगढ़ की स्थापना हुई, उसके बाद इस इलाके में सारे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई।
0: जी
1: और मतलब रेडियो के प्रति जो दीवानगी थी वो आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। पहले जो है ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का था, जिसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा के आकाशवाणी ने 300 किलोवाट तक कर दिए, जिससे हमारे प्रोग्राम जो है दूर दूर तक प्रसारित होने लगे हैं।
0: बिल्कुल
1: हमारे आकाशवाणी के कॉटन सिटी सूरतगढ़ का नाम दूर दूर तक प्रसारित होने से हमारे कार्यक्रम के विषय में प्रतिक्रियाएं आने लगी है।
0: जी
1: आधुनिक रेडियो आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल विविध भारती, FM, सामुदायिक रेडियो सभी जगह पर है। आकाशवाणी सूरतगढ़ के श्रोता बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। आज आधुनिक तकनीक से रेडियो की जो तरक्की भी हुई है उसे मीडियम वेव, FM, DRM में भी सुनने को मिलता है। इसके
0: जी
1: अलावा आप फोन ऐप पर भी रेडियो सुन सकते हैं,
0: बिल्कुल, सुन सकते हैं।
1: और आधुनिक जो गाड़ियां आज के जमाने में उसमें भी एक कंपनी द्वारा FM की सुविधा दी गई है,
0: बिल्कुल,
1: उसमें भी
0: FM
1: आप
0: और मीडियम वेव भी, अभी
1: मीडियम
0: आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें मीडियम वेव भी लगा हुआ आता है।
1: लगा हुआ है, मीडियम और FM दोनों लगा हुआ है।
0: जी
1: और आपके जो कार्यक्रम मैं लगातार सुनता रहता हूँ, उससे भी हमें काफी प्रेरणा मिलती है, हमें
0: जी
1: काफी अच्छा लगता है।
0: जी
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ के विषय में कहना चाहूंगा कि इसका प्रसारण बहुत ही बढ़िया है और मनोरंजन से भरपूर है। आकाशवाणी की स्थापना के दिवस पर आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था, जिसे आकाशवाणी के पूर्व और वर्तमान के स्टाफ को शामिल किया था, जो बहुत ही लाजवाब था।
0: मनीष जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे आकाशवाणी केंद्र सूरतगढ़ के बारे में भी बताई हैं। हम आपसे यही जानना चाहें कि जो युवा श्रोता आपको सुन रहे हैं या हमारी आज की जनरेशन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं आज के युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा, आप रेडियो से जुड़े रहें,
0: जी
1: जुड़ने से आप में शालीनता आएगी
0: जी
1: और आप कार्यक्रम को सुनेंगे तो आपके मन में थोड़ी सी शांति आएगी। आकाशवाणी में सबसे ज़्यादा आप समाचार सुने, अन्य प्रादेशिक कार्यक्रम वो सुने,
0: जी
1: इससे आपका मन भटकेगा नहीं
0: बिल्कुल
1: और एकाग्रता आएगी मन में।
0: जी, मनीष जी आपने बिल्कुल सही बात कही है कि रेडियो जो है वो आपके पूरे व्यक्तित्व को एक अच्छी दिशा दे
1: हाँ,
0: सकता
1: आप
0: है।
1: फोन ना
0: और
1: सुन करके और अदर
0: हाँ,
1: एक्टिविटी से हट करके आप इस रेडियो से जुड़ेंगे तो आपको, आप महसूस करेंगे आपको कि अंदर,
0: शांति का अनुभव आप
1: हाँ
0: रेडियो को
1: शांति,
0: सुनते हैं जब आपको होता है।
1: हाँ
0: मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव जो है रेडियो के हमसे साझा किए, हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने आकाशवाणी की 90 वर्ष का अनुभव विषय पर रेडियो श्रोता मनीष कुमार से नवीन सिसोदिया की बातचीत सुनी। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं परिवार की, बच्चों की। जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय जो होता है वो बचपन और किशोरावस्था का होता है, और यही वह अवस्था है श्रोताओं जहाँ एक बच्चा धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच, अपनी आदतों और भविष्य का निर्माण करता है।

इसलिए बढ़ते बच्चों के साथ हमारा व्यवहार केवल पारिवारिक विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। आज का जो बच्चा है वो कल का नागरिक होगा, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, कलाकार और देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनेगा। इसलिए बच्चों के साथ हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण, समझदारी भरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। श्रोताओं, जब बच्चे छोटे से बड़े होने लगते हैं तो उनके शरीर, दिमाग और भावनाओं में तेज परिवर्तन होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था में मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, आत्मसम्मान बढ़ता है, स्वतंत्रता की इच्छा होती है और वे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे कभी जिद्दी लगते हैं, कभी चिड़चिड़े और कभी बहुत शांत और कभी अत्यधिक उत्साहित। अक्सर माता पिता इसे बदतमीजी या अवज्ञा समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह उनके भीतर चल रहे मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन का ही नतीजा होता है। उसको आज का जो बच्चा है वो केवल आदेश सुनना नहीं चाहता है, वो समझा जाना चाहता है कि उसे समझा जाए। यदि बच्चा अपनी बात कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, अपनी राय दे रहा है तो यह उसकी जागरूकता का संकेत है, अवज्ञा का नहीं है। हमें चाहिए कि बच्चों की बात ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, हर समय बच्चों की तुलना न करें। गलती यदि वो करते हैं, स्वाभाविक है, करेंगे, बच्चे हैं, तो अपमान नहीं, उनका मार्गदर्शन करें। डर नहीं, विश्वास का वातावरण बनाएं, क्योंकि जिस घर में संवाद होता है वहां बच्चे भटकते नहीं हैं। आज समाज में हम देखते हैं कि पढ़ाई, प्रतियोगिता और सफलता का दबाव बहुत बढ़ गया है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे आगे निकले, लेकिन जब अपेक्षाएं जो हैं वो क्षमता से अधिक हो जाती हैं तो बच्चे तनाव, भय और हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। कई बच्चे इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं समझेगा। शो तो हमें याद रखना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई कला में, कोई खेल में, कोई सामाजिक व्यवहार में। तो बच्चों को मशीन नहीं, इंसान समझना होगा। और आज हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बीच बड़े हो रहे हैं, और यदि परिवार बच्चों को समय नहीं देगा तो स्क्रीन उन्हें अपना साथी बना लेगी। इसलिए बच्चों को केवल मोबाइल मत देखो ये कहना पर्याप्त नहीं है, हमें उनके साथ समय बिताना होगा, खेल, पुस्तक और संवाद की आदत डालनी होगी, परिवार में हंसी और अपनापन बढ़ाना होगा। क्योंकि भावनात्मक रूप से अकेला बच्चा जल्दी गलत संगति की ओर आकर्षित हो जाता है। एक सभ्य जो समाज है वो वही है जहां बच्चे सुरक्षित, सम्मानित और खुश हों। यदि घरों में बच्चों को अपमान, हिंसा और भय मिलेगा तो समाज में भी आक्रोश बढ़ेगा, असंवेदनशीलता और अपराध बढ़ेंगे। लेकिन यदि बच्चों को संस्कार, सहानुभूति, अनुशासन और प्रेम मिलेगा तो वही बच्चे आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और देश की असली प्रगति जो है श्रोताओं वो ऊंची इमारतों से नहीं है बल्कि अच्छे संस्कार वाले बच्चों से होती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है अमिताभ बच्चन और जूही चावला ने, जावेद अख्तर के बोल हैं, विशाल शेखर का संगीत है, फिल्म है भूतनाथ।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ सुप्रभात के संग से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली

0: बिल पता है कितना आता है?
1: जीरो।
0: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
6: Collaborate closely to maintain security.
7: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
6: Full potential of our time.
4: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
8: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के

0: उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज

0: पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर

0: हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those

0: 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक के ज़बरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। और फुटबॉल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर लगातार छठी मर्तबा ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अमित शाह की तरफ से हिदायत उस वक्त सामने आई जब उन्होंने शिमाल मशरिकी रियासत के सरहदी इलाकों से मुतालिक बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की सदारत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीरे दाखला ने यह हिदायत भी की कि गुज़िश्ता 5 साल की ज़मीन से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जांच कराई जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों की पूरी चेन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी ज़िलों में माली ज़ाब्तगी को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। जनाब शाह ने हिदायत दी कि कलेक्टर्स और GST अफसरों को भी तरबियत दी जानी चाहिए और बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT जाली करेंसी का सर्वे कराए। वजीर दाखला ने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वालों को तरबियत देने के लिए कैंपों का अहतमाम किया जाना चाहिए ताकि मनशियात और आतिशी असलाह के खतरात से निपटा जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि इन कैंपों से पटवारियों, मकामी पुलिस और BSF अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में इस बात को उजागर किया गया कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में बैन अलाक्वामी सरहदों से मुतसर इलाकों के आला मेयारात को यकीनी बनाने के तहत पूरी तरह कारबंद है, जबकि वो सरहदी इलाकों की मजमू तरक्की और सलामती के लिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान करीबी तालमेल को फ़रोग दे रहा है। आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने, उस तक पेशगी रसाई और फरोख से मुतालिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये मुनज्जम जालसाजी गिरोहों का काम है जो तलबा और उनके कुनबों की बेचैनी पर पनपते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: NTA ने कहा है कि इम्तिहान की मोतबरियत पूरी तरह कायम है और उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और महफूज इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। NTA ने कहा है कि वो इस तरह के चैनलों, अकाउंट्स और मवाद की सरगर्म तरीके से पहचान में लगा हुआ है और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स और साइबर जराइम हुकाम से इसे हटाने और कार्रवाई करने में मसरूफ़ है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो किसी तरह का कोई माली लेन देन ना करें, ना ही इसी तरह के किसी मैसेजेस को आगे बढ़ाएं और ना ही धोखेबाजों के फरेब में आएं। NTA ने उम्मीदवारों से अफवाहों को नज़रअंदाज करने और मोतबर मालूमात के लिए NTA की मुस्तनद वेबसाइट और चैनलों पर ही इन्हेसार करने की अपील की है। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीरे मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल सेहत इको निज़ाम को फ़रोग देने के तई अहद बस्ता है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से ज़्यादा मुनफरद आभा शिनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं और 100 करोड़ से ज्यादा डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन आभा ID से मुंसलिक कर दिया गया है। मुकम्मल इंटरव्यू 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड और इजाफी मीटरों पर आज शाम 7:10 पर मोदी हुकूमत के 12 साल की हमारी खसूसी सीरीज में नशर किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि BJP सरकार रियासत में दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर

0: सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की साबिका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निज़ाम में बदउनवानी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि टीएमसी हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकद्दस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी, लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब खत्म हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पीएम इक्तिसादी मशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाति तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर UPI इंडिया और नेपाल के UPI को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क ज़रूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दो तरफा तआवुन को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राज़ील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेज़ी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफ़ी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपये होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपये थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में थ्रिसूर,

इसी ब्रह्मनाद कहा गया है। वह आद्य ध्वनि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। जब कुछ भी नहीं था तब भी ओम की दिव्य तरंगें थी। हमारे वेद, उपनिषद और गीता सभी ओम की महिमा का गुणगान करते हैं। कहा जाता है कि अ, उ और म, इन तीन अक्षरों से मिलकर बना ओम संपूर्ण जीवन का सार है। अ सृजन का प्रतीक है, उ पालन का और म संघार एवं नई चेतना का, यानी ओम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब मन अशांत हो, विचार विचलित हो, तब ओम का उच्चारण मन को स्थिर करता है और वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम की ध्वनि हमारे मस्तिष्क और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और ये ध्यान, शांति और आत्मिक शक्ति का भी स्रोत है। तो लीजिए कार्यक्रम में पहले सुने ओम की महिमा।

श्रोताओ, जीवन की भागदौड़, चिंताएं और तनाव जब हमारे मन पर भारी होने लगते हैं, तब प्रभु का नाम हमारे लिए एक अमृत के समान बन जाता है। ईश्वर के नाम का जाप, भजन, कीर्तन और संकीर्तन ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को शांति देने का एक दिव्य माध्यम है।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने कुछ भक्ति रचनाएं सुनी। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों

0: का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को नहीं मानने और किसी तरह का भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा कल जोधपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्री शर्मा नए आपराधिक कानूनों का प्रयोग कर पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की दिशा में काम करने की बात कही।
1: जो ड्रग माफिया हैं, उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है, इस पे विशेष रूप से चर्चा की। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारे जो निगरानी है साइबर क्राइम में, उसको हमने बढ़ाया है।
0: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। जैसलमेर के सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। भारत पाक सीमा से सटे 30 गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, पलायन रोकना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना का संचालन होता है। इसमें इस बार टोटल 184 विलेजेस लिए गए हैं। इसमें से जैसलमेर जिले के 30 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है। बेसिकली जो सरकार चाह रही है कि उसमें जो हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांव का सैचुरेशन हो।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल जयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक में भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों का निराकरण करने और हर प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @

0: @AIRnews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों, पार्कों, स्टेडियमों और योग संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यास बगीची में लोगों ने अनेक आसनों के जरिए नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस बीच अहमदाबाद में चल रही विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के रोहन तायडे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लड़कों की सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में हासिल की। चैंपियनशिप में भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। फिट इंडिया मिशन के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने भाग लिया। पाली में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम और फिटनेस का संदेश दिया। अजमेर में राजस्थान पुलिस और 11 राज यूनिट एनसीसी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के सीओ कर्नल अजय दाधीच ने दैनिक जीवन में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
1: साइकिल चलाने से हम सिर्फ पोल्यूशन का ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं। हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फिट योरसेल्फ, एक बार संडे को, नहीं तो कभी भी छुट्टी पे, और जैसे बच्चों की तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें साइकिल का ग्रुप बना के आराम से कहीं ना कहीं इवेंट रखना चाहिए कि आज यहाँ जा रहे हैं, कभी इस फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, आप फिट रहेंगे।
0: राज्य में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित करीब 13 शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर के लूणकरणसर में ओले गिरने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच रात का न्यूनतम तापमान भी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के काकामिगाहारा में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम

0: के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान जो कि

0: वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जसपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
1: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक के स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
0: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
0: मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
0: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के वजह बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं।

0: हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए। हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है। मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय। हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था। उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए। उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी आया कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे।
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है
1: जी।
0: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें। कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए। वहाँ हम लोग का मतलब कि गाँव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ताह में जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इस मिनट उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन काम है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घर में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है,
1: यानी लगातार व्यस्त रहते
0: हैं। मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
1: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब

0: गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध हैं?
1: सर, उसके लिए भी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहाँ हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
0: जी,
1: चाहे जिससे का महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है, जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने दीवाना फिल्म के लिए मुकेश को सुना। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत शंकर जयकिशन का। और लीजिए, अब सुनिए दो रास्ते फिल्म का ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए सावन को आने दो फिल्म का ये गीत यशुदास की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा है और राज कमल ने संगीत दिया है।

शुदा भी अपनी दिलवाले फिल्म का नगमा सुना, कुमार सानू की आवाज़ में समीर के शब्द थे और नदीम श्रवण का

संगीत और लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए फना फिल्म के लिए कैलाश खेर और शान को। शब्द रचना प्रसून जोशी की है और संगीत जतिन ललित का।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए रात और दिन फिल्म का ये नगमा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है।

श्रोता अभी यह फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। लीजिए श्रोताओं सुने कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हमने किया सरस्वती चंद्र फिल्म के नगमे के साथ, जिसे गाया था मुकेश ने। शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। सुनना चाहते थे आप सब रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सिद्धार्थनगर दयारपुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। इसी गीत के लिए हमें संदेश प्रेषित किया सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा का संदेश हम तक पहुंचा, हमने शामिल किया कार्यक्रम में। और केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल और इनके साथ हैं तारा चंद दायमा। और ये संदेश है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का। और श्रोताओ, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से उत्तर प्रदेश से ये संदेश हम तक पहुंचा है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुम्बना अंसारी और आलिया अंसारी का। और रामद्वारा के पास डावली रंगाला जालोर से हमारे श्रोता हैं धनवंती आसू, सांस्टा, खुशबू धेड़ू, खुशवीर धेड़ू, तेज वर्धन सिंह देड़ू, सिद्धार्थ प्रियदर्शी, दिनेश रोपड़िया, विनोद लूखा, अशोक कुमार, लीला ज्योति, प्रतिभा तरण, भरत तरण, मास्टर पेमाराम देड़ू और इनके साथ हैं शेराराम, राम स्नेही और कोहला राम और वीरेंद्र चौधरी। और ये संदेश हमें मिला इस गीत को सुनने के लिए मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आशा रेडियो।

शोता संघ का। हमारे श्रोता हैं अभिजीत गवाहन कर राही, सरिता गवाहन कर, प्रणीता सिद्धांत गवाहन कर, अर्जुन गवाहन कर टुक टुक, वैशाली शैलेश गवाहन कर, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाहन कर परी। इनके साथ हैं प्रिंस एकांश गवाहन कर। और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत। हिमालय की गोद में से हमने लिया है मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी का बोल है और कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। लीजिए सुनिए।

ये संदेश हमें मिला गांव कलाना तहसील भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश और युद्धव कड़वासरा का। इनके साथ हैं कृष्ण मायल, हनुमान सहारण, किड्डूराम जोया और लीलाधर स्वामी और कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा भी इनके साथ हैं। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का संदेश भी हम तक पहुंचा, हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का संदेश भी कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस गीत को सुनना चाहा था गांव घमंडिया से जगदीश ठुकिया, प्रमिला ठुकिया, ज्योति शिवम ठुकिया, सरिता सचिन, अमना

शर्मा भी इनके साथ हैं। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का संदेश भी हम तक पहुंचा, हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का संदेश भी कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस गीत को सुनना चाहा था गांव घमंडिया से जगदीश ठुकिया, प्रमिला ठुकिया, ज्योति शिवम ठुकिया, सरिता, सचिन, अमना, इनके साथ हैं तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया और दोहिती ईवा धारणिया। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया और इनके साथ है गुड्डू। और श्रोताओं, ये संदेश हम तक पहुंचा हमारे श्रोता सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का, गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी और सगुन बारासा का भी संदेश हम तक पहुंच गया है। कार्यक्रम में आप शामिल हो गए हैं। और शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी हमें सुन रहे हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है। और चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल जोसन और रोबिन सिंह जोसन वैनकूवर ने हमें संदेश दिया और हमने शामिल किया। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण का संदेश हम तक पहुंचा। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें खत मिला हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतंग बिरक और मीका बिरक का। और ये पत्र हमें मिला कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर ज्योति, आकृति और जय राहुल का। और लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत जो हमने लिया है आपकी पसंद पर बंदिनी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत शैलेंद्र का है और संगीत एस डी बर्मन का है।

श्रोता हूँ, अभी आपने बंदिनी फिल्म का नगमा सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र का गीत था और एसडी बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएं पारसमणि फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सुनना चाहते हैं आप सब? गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनीष सहारन, फवारा चौक सिरसला जिला चूरू से हमारे श्रोता हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और समस्त सोनगरा परिवार। और ये संदेश सोशल मीडिया पर हमें मिला है मोहाली चंडीगढ़ से, सेक्टर 67 से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और इनके साथ हैं बिट्टा बजाज। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूनत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूनत की फरमाइश भी हमने शामिल कर ली है। चंडीगढ़ से हमारे नियमित श्रोता हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। और ये फरमाइश हमें मिली है गांव अरायन से बनवारीलाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल और उनके परिवार के सदस्यों की। और यह संदेश है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये और इनके साथ हैं बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ओशोतो, ये पत्र हमें मिला है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, कैलाशपुरी और उनके परिवार के सदस्यों का। और ये खत हम तक पहुंचा है लालगढ़ से असगर अली, अनवर अली, मुमताज, सोनू, टीना, वहीदा, सहीदा, ताहिरा, खातून बेगम और उनके परिवार के सदस्यों का। और एक पत्र

ओर हम तक पहुंच गया है और हमारे श्रोता हैं मसीता डबवाली से दर्शन लोट, इंद्रजीत कमलजीत, मीनाक्षी सागर और हनी लोट। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया और दिशानी, इनके साथ हैं निमित आहूजा। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से हमारे श्रोता हैं अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। इनका संदेश भी हमने शामिल कर लिया है कार्यक्रम में। नियमित श्रोता हैं हमारे। और गांव हीरावाली फाजिलका से, पंजाब से हमारे श्रोता हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिनवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। और लीजिए श्रोताओं, अब आप सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत, पारसमणि फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो मित्र संजीव कालिया। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए, ताजमहल फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। सुनना चाहते हैं आप सब, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जोहरी, गांव फरांसी जिला सिरसा से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू इनके साथ हैं हमेशा की तरह। और ये संदेश हमें मिला है गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। और ये संदेश हम तक पहुंच गया है सागर मध्य प्रदेश से, हॉस्पिटल रोड विश्वविद्यालय सागर से, चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर और जयपाल यादव का। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

हमें संदेश भेजते हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा का संदेश हम तक पहुंचा है। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और सनी भावसार की फरमाइश भी हम तक पहुंच गई है। और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और उनके परिवार के लोग हमें सुन रहे हैं। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। और ये हमारे श्रोता हैं निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और इनके साथ हैं करमजीत कौर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतंग बिरक और मीका बिरक, इनका खत भी हम तक पहुंचा था, संदेश भी इन्होंने दे दिया है। और ये संदेश है ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। गांव धुंध धाड़ा तहसील लूनी जिला जोधपुर से अलादीन धुंधड़ा धुंधाड़वी का ये संदेश हम तक पहुंच गया है और हमने शामिल कर लिया है। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज बिरख और लाला वेली का संदेश भी हम तक पहुंचा। और राय के कलां जिला बठिंडा से ये पत्र है सतपाल सिद्धू, सुखजीत कौर सिद्धू, प्रदीप सिद्धू, हरप्रीत सिद्धू और गुरदास सिद्धू का। इनके साथ हैं इंद्रजीत मनिंदर सिद्धू। अनूपगढ़ से जुगल किशोर ढालिया, मनोहरी देवी, मनोज ढालिया, राजकुमार ढालिया, सरस्वती देवी, गंगा देवी और इनके साथ हैं पूनम, प्रियांश और नव्या। आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत ताजमहल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में।

और लीजिए श्रोताओ, सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत। पत्थर की सनम फिल्म से इसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और सुनना चाहते हैं आप सब। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और उनके परिवार के लोग। फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवांशी खेड़ा। और ये संदेश हमें मिला है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं PS नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष व इनके परिवार के लोग। ये फरमाइशी संदेश हम तक पहुंच गया है। हमारे श्रोता हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब और पलक लुबना इनके साथ हैं यश मंसूरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, मोहम्मद खां, विनोद खां, मुखराम जी इनके साथ हैं और इनके परिवार के सदस्यगण हैं। इन सब का संदेश भी हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से यह संदेश हमें मिला है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का। कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और मास्टर अल कबीर का संदेश हम तक पहुंचा है। हयात कॉलोनी अरिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीजा परवीन

की फरमाइश भी हमने कार्यक्रम में शामिल कर ली है। और गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया और उनके परिवार के लोग हमें सुन रहे हैं, आप कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर ने हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा है। आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और ये संदेश हमें मिला है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। हमारे श्रोता हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, इनके साथ हैं संगीता, लिपि और दीपाली गोप। आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीत, और लीजिए अब सुनिए घराना फिल्म के लिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल को सुनना चाहते हैं आप सब। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और उनके परिवार के लोग, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन, कुलदीप गांधी और उनके परिवार के लोग, बाबा कुटी रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान ने हमें संदेश प्रेषित किया और हमने उनका संदेश कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर। ये हमारे श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और साहनी परिवार हमें संदेश प्रेषित करता है और हमने शामिल कर लिया है। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान और कुलविंदर कौर मान का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा का संदेश भी कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका है। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका का संदेश भी हम तक पहुंच गया है और ये संदेश है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवार के सदस्यों का। और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी बेबी और हिमाक्ष का

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्रेषित किए नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त केरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु और उनके परिवार के सदस्यों ने। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारी लाल पुरोहित मोनी पारिक और भूपेंद्र पारिक इनके साथ हैं। रामेश्वर माहर गांव सादेवाला सिरसा से हमें खत लिखते हैं, संदेश प्रेषित करते हैं। इनकी फरमाइश का गीत हमने सुनवाया। श्रोताओं, ये संदेश हमें मिला कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से। हमारे श्रोता हैं सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। और गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत और उनके परिवार के लोग। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और पलारी छत्तीसगढ़ से नीतेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी का संदेश भी हमने शामिल किया। गांव नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से गौरव कड़ियारा और लड्डू इनके साथ हैं। श्रीगंगानगर से अर्शिव भाटिया का संदेश भी हम तक पहुंचा। श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सदाबहार नगमे सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, गीत केवल मनोरंजन नहीं होते, वो हमारी यादों के साथी, भावनाओं के दर्पण और जीवन के हम सफ़र होते हैं। कभी ये हमें बीते हुए पलों से मिलाते हैं तो कभी आने वाले कल के सपने दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से।

श्रोताओं, अभी आपने आवारगी फिल्म में मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर को सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत था अनु मलिक का। और लीजिए अब सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की हैं। गीत के बोल संतोष आनंद के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में पति पत्नी और तवाई फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। गीत के बोल गुलशन बावरा के थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

संगम फिल्म में आपने लता मंगेशकर और मुकेश को सुना। गीत के बोल शैलेंद्र के थे और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए सुनिए अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत। आवाज़ें किशोर कुमार, मुकेश, रफ़ी और लता की हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने दीवार फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोसले को सुना। गीत के बोल साहिर के थे और संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। गीत के बोल शैलेंद्र के थे और संगीत शंकर जय किशन का।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में अभी आपने साथ साथ फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल जावेद अख्तर के थे और संगीत कुलदीप सिंह का।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में कालिया फिल्म का ये गीत गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

सनम तेरी कसम इस फिल्म में अभी आपने आशा भोसले को सुना। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर।

बहनी अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, घर को ठंडा और आरामदायक रखने के उपाय, फूड फॉर लीवर हेल्थ, फेंक और फॉरवर्ड मैसेज से सावधान।

फिल्म संगीत का समय रहेगा दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम आप हमारी शाम की सभा में सुनेंगे 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, रंग रंगीला हमारा राजस्थान, मदरसा आधुनिकीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और आज का इतिहास।

मिनट पर। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे 6:40 पर। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा 7:00। इसमें आज आप सुनेंगे मृदा में वायु संचार, धान की पौद में कीट नियंत्रण, माटी जांच का सही तरीका, मौसम और बाजार भाव।

फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:45 पर। फिल्म संगीत एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15 पर।

रूपको का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। रविवार संगीत सभा ये भी आप हमारे दिल्ली केंद्र से ही सुनेंगी रात्रि 10 बजे।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम में मैं लक्ष्मी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जीवन एक मधुर सरगम है। कभी इसमें खुशियों के स्वर गूंजते हैं तो कभी यादों की हल्की सी तान मन को छू जाती है। संगीत वही भाषा है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देती है। कहते हैं ना कि कभी धूप बनकर उतरती है यादें, कभी छांव बनकर ठहर जाती है। जो बात लफ्ज़ों में कह न सके हम, वो गीत बनकर बिखर जाती है। तो आइए आज के इस संगीतमय सफ़र में सुनते हैं कुछ सदाबहार नगमे, जिन्होंने प्रेम, प्रतीक्षा, सपनों और भावनाओं को अपनी मधुर धुनों में सजा दिया। कभी कभी प्रेम की अनुभूति ऐसी होती है कि मन किसी एक चेहरे, एक मुस्कान और एक एहसास के लिए बेचैन हो उठता है। उस बेचैनी में भी एक मधुरता होती है, एक मीठी प्रतीक्षा होती है। दिल की वीरान राहों में कोई सदा आती है, बंद आंखों में भी एक तस्वीर नजर आती है। इश्क जब दिल में उतर जाए खामोशी बनकर, हर धड़कन में किसी की पुकार आती है। सुनते हैं गैम्बलर फिल्म का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, संगीत एस टी बर्मन का।

साथियों, प्रेम जब आंखों में बसता है तो सपने भी उसी के हो जाते हैं। फिर हर सुबह उसी के नाम और हर शाम उसी की याद में ढलने लगती है। मोहब्बत का सफ़र भी कितना हसीन होता है, कभी खामोशी तो कभी दिलनशी होता है। जिसे दिल अपनी दुनिया मान ले एक बार, फिर वही हर ख्वाब का ज़मीन होता है। अब सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, संगीत खयाम का और गीत गुलजार का।

साथियों, पहले प्यार का इजहार शायद दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। दिल में हजारों बातें होती हैं, लेकिन होठों तक आते आते शब्द ठहर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि दिल की बात दिल में रहे तो बोझ बन जाती है, और लबों पर आ जाए तो दास्तां बन जाती है। इश्क की दुनिया में बस इतना सा फर्क है, खामोशी उम्र भर रहती है, बात अमर हो जाती है। अब सुनिए पड़ोसन फिल्म का ये गीत। आवाज़ किशोर कुमार की है, संगीत आर डी बर्मन का और गीतकार राजेंद्र किशन।

दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर बहार एक दिन गुजर जाती है। इसलिए जो पल मिला है उसे पूरी खूबसूरती से जी लेना चाहिए। वो कहते हैं कि फूलों का मुकद्दर है खिलना और बिखर जाना, मौसम का दस्तूर है आना और गुजर जाना। जो आज मिला है उसे जी भर के जी लो, कल का भरोसा किसने पाया है जमाना। सुनिए शर्मीली फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, संगीत एसटी बर्मन का और गीतकार नीरज।

दोस्तों, सपनों की अपनी एक दुनिया होती है। वहाँ रंग भी अलग होते हैं और मौसम भी। प्रेम जब ख्वाबों में उतरता है तो हर दृश्य कविता बन जाता है। वो कहते हैं ना कि ख्वाबों की वादी में जब प्यार उतरता है, हर लम्हा किसी गजल सा निखरता है। दिल को मिल जाए जब चाहत का हमसफ़र, तब वक्त भी ठहर ठहर कर गुजरता है। तो लीजिए सुनिए सिलसिला फिल्म का ये गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, संगीत शिव हरिका और गीतकार जावेद अख्तर।

दोस्तों, सुरों की महफिल यूं ही सस्ती रहे, दिलों में प्रेम की शमा जलती रहे, गीतों की ये खुशबू महकती रहे हर दम, जिंदगी यूं ही मुस्कुराती और गुनगुनाती रहे। इसी के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को समाप्त करने की लक्ष्मी को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक पंकज उदास को।

0: श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान।
1: कार्यक्रम सुनणिया सगले परिवार ने भाई राजन का घना घना राम राम, मोकला मोकला राम राम सा। भाई लोगों, आपा के खेती खड़ मिणक हाँ, और आपने जी की खेती है भी मैं सुधार करण खातर, खेती में ज़्यादा फायदों लेन खातर के आपा खेती में अपनी मैं भांत भांत की चीज़ें हैं जिको बहु प्रयोग करता रहा। कदे कदे आपा ने बहु फायदों देखने ने मिले तो कदे कदे नुकसान भी आपा ने हो जाए। और अगर इक कड़ी में बात करें आपा तो बड़ा बुजुर्ग भी अपना हमेशा आई बात कहे कि जिको आदमी परिवर्तन ने स्वीकार करे, परिवर्तन के हिसाब हुआ आगे बढ़े तो वो जीवन में काफ़ी सफलता हासिल करें। इन कड़ी में आगे चला आपा और खेती पाती की चर्चा करें तो आपने भारत में अगर महत्वपूर्ण दलहनी फसलों की बात करें तो ग्वार गोभी में सबू बड़ो योगदान है, क्योंकि यह दलहनी फसल होने के सागे सागे एक औद्योगिक फसल भी है। अगर इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें आपा तो इन्हें साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा नामों भी आपा जाना है। राजस्थान अपने देश को जितो भी ग्वार उत्पादन हुआ है बिंगो प्रमुख सहयोग सदाओं कर तो आया, क्योंकि भारत को कुल ग्वार उत्पादन जितो भी हुआ है बीमें सबों बड़ो योगदान आपने राजस्थान को हुआ है। ग्वार को उपयोग आपा सब्जी में, पशुओं के चारा में, हरी खाद में और ग्वार गम बनाने खातर भी करा हाँ। इनकी खेती कम बिरखा वाला जी का क्षेत्र है वह में भी आपा अच्छे तरीकों कर सका हाँ। ग्वार के महत्व के ऊपर बात करें आपा तो आ एक दलहनी फसल है जिसकी आपने जमीन की उर्वरता शक्ति है बिना बढ़ावे है, पशुओं खातर पौष्टिक हरे चारों आपा ने उपलब्ध करावे है। ग्वार गम को उपयोग भी आपा खाद्य, वस्त्र, कागज, दवाई और पेट्रोलियम उद्योग में आमतौर पर देखा हाँ। कम पानी में सबों ज़्यादा अच्छी पैदावार देने वाली यह फसल है। जलवायु की बात करें तो गर्म और शुष्क जलवायु के खातर सबों ज़्यादा उपयुक्त तो मानी जाए, जिंग मान लगभग 25 से ले गए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इनकी बढ़वार खातर सबों ज़्यादा बढ़िया मानी जाए। 300-500 मिलीमीटर बिरखा वाला जितना भी क्षेत्र है वह इनके खातर काफ़ी उपयुक्त है, और अच्छी जल निकासी वाली जिकी भी बलुई दोमट है वह जमीन के खातर सबों ज़्यादा बढ़िया मानी जाए। जमीन को जिको पीएच मान है लगभग 7.0 से लेके 8.5 तक सबसे ज्यादा उपयुक्त रहे। इनकी उन्नत किस्म की

0: ई काम में ना लेवा। ग्वार की खेती सिंचित असिंचित दोनों ही परिस्थितियां मापा कृषि कहाँ। बिरखा के बाद एक या दो जुताई और सुहागो लगा के खेत अच्छी तरीका हूँ तैयार कर लेवा, जिसकी वजह के हैं कि जितनी भी घास फूस है वह नष्ट हो जाए। और अगर टाइम पर बिरखा न हुआ तो आपने किसान भाई जिका भी ऐसा क्षेत्र है जिठे पर्याप्त तो बिरखा नहीं हुई हुआ है तो जून गए मध्य मूले गए और जुलाई गए पहले पखवाड़े तक पड़े वो दे गए बीजांत कर सके हैं। ग्वार के बाद दूसरी फसल अगर आपने ना लेनी हुआ तो बीजांत आपा जुलाई के आखिर तक भी कर सका हाँ। बीजांत के सागे सागे बीज की मात्रा और बुआई की जिकी विधि है बिंगी बात करें तो अनुकूल परिस्थितियां में बीजांत आपा लगभग 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दरों प्रयोग कर सका हाँ। ग्वार की जिकी बीजांत है आपा ड्रिल के माध्यम कर सका हाँ या दो पुराऊँ भी कर सका हाँ। इनमें कतारों कतार की दूरी लगभग आपा 30 सेंटीमीटर रख लेवा और नहरी सिंचित क्षेत्र खातर ग्वार में कतार की दूरी है जिकी आप आवा 45 सेंटीमीटर पर राख कर बीजांत कर देवा। बीज लगभग 3 किलोग्राम प्रति बीघा की दर वहाँ पर प्रयोग कर लेवा और बीज उपचार करण खातर आपा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज ने बुआई हूँ 1 घंटा पहले राइजोबियम और PSB कल्चर के पाउडर हूँ 3 पैकेट हूँ उपचारित कर गए बोया हूँ कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जी का भी उर्वरक है बांगी भी बचत कर सका हाँ। और अन्य जी की दलहनी फसलों की भांति ग्वार नापा राइजोबियम जीवाणु कल्चरों भी उपचारित कर गए बीजांत करा तो अपनी पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी देखने मिले। आज की आपने यहाँ ग्वार की जानकारी किसान भाई ध्यान रखे और अब आज खातरी तो ही भाई राजे ने आज्ञा दो राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जलडमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और LPG की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। इस बीच घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट UG परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। NTA ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ

0: डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कोटपुतली में पुलिस कर्मियों ने साइकिल रैली निकाली। इसके बाद पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में दशहरा मैदान से सर्किट हाउस तक साइकिल रैली में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। इस बीच पश्चिमी जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई अन्य स्थानों पर दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक तापमान बढ़ने और गर्मी का असर बने रहने की संभावना जताई है। बीकानेर में होने वाले खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 के लिए खिलाड़ियों के पंजीयन शुरू हो गए हैं। इसके लिए 25 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। गेम्स में 15 से अधिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें टीम और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की स्पर्धाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत लेकर उपस्थित हूँ। स्वागत है आप सब श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। आशा करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। आप इस पर अपने कमेंट्स, सुझाव या विषय बता सकते हैं। मैनो आज के कार्यक्रम में हमारा चर्चा का पहला विषय है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हर साल 7 जून को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य की नींव है। सुरक्षित भोजन का अधिकार हर व्यक्ति को होता है और ये जो क्योंकि असुरक्षित भोजन जो है बीमारियों, कुपोषण और आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। मैंने क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी थाली में आने वाला भोजन कितना सुरक्षित है? बात करें कि खाद्य सुरक्षा क्या है, इसका मतलब है ऐसा भोजन जो स्वच्छ, पोषण युक्त, ताज़ा और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, रसायन, कीटनाशक या मिलावट ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों लोग दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रभावित होते हैं बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। तो मैंने असुरक्षित भोजन से हमें होने वाली कुछ आम समस्याएं हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस और बच्चों में कुपोषण और कर्क रोग जैसी बीमारियां। तो इन पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

बहनों, खाद्य सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। किसान यदि सही मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करें, जैविक खेती को अपनाएं और फसल की सही देखभाल करें, तो भोजन की सुरक्षा की पहली कड़ी मजबूत होती है। खाद्य उद्योग और दुकानदारों को साफ सफाई, सही स्टोरेज और गुणवत्ता मानकों का पालन करना चाहिए। उपभोक्ताओं की भूमिका भी अहम है, यानी आप और हम उत्पाद की एक्सपायरी डेट देखें, खुले और गंदे स्थान का खाना नहीं खाएं, खाद्य पदार्थों की सही पहचान करनी चाहिए, मिलावटी वस्तुओं की शिकायत करनी चाहिए। और बहनों, हम महिलाओं की भूमिका भी खाद्य सुरक्षा में बेहद महत्वपूर्ण है। घर की रसोई से लेकर बच्चों के टिफिन तक महिलाएं भोजन की गुणवत्ता तय करती हैं। बच्चों को घर पर ही स्वच्छ व पौष्टिक भोजन बनाकर दें और उन्हें बाहर के तैलीय मसालों वाले खाने से होने वाले नुकसानों से परिचित भी कराएं। और आज खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम सुरक्षित भोजन अपनाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देंगे। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, गर्मी का मौसम है और गर्मी आते ही आपको पता है सबसे बड़ी समस्या बन जाती है घर के अंदर बढ़ता तापमान। तेज़ धूप, उमस और गर्म हवाएं घर को भट्टी जैसा बना देती हैं। ऐसे में हर समय एसी या कूलर चलाना न केवल बिजली का बिल बढ़ाता है बल्कि सेहत और पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि कुछ सरल और सस्ते और प्राकृतिक उपाय अपनाकर

हम अपने घर को ठंडा और आरामदायक बना सकते हैं। घर को ठंडा रखने के लिए सबसे ज़रूरी है हवा का सही आवागमन। सुबह और शाम के समय खिड़कियाँ दरवाज़े खोलकर ताज़ी हवा आने दें। रसोई और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगवाएं ताकि गर्मी जो है बाहर जा सके। और खिड़कियों पर मोटे हल्के रंग के पर्दे लगाएं। दोपहर के समय धूप वाली दिशा की खिड़कियाँ ढक कर रखें। घर की छत सबसे ज़्यादा गर्म होती है और छत पर सफ़ेद या हल्के रंग का रिफ्लेक्टिव पेंट करवा सकते हैं जिससे धूप प्रवर्तित हो जाए। और मैं मिट्टी के घड़े या पानी से भरे टब छत पर रखने से भी ठंडक मिलती है। पेड़ पौधे भी प्राकृतिक एसी की तरह काम करते हैं। और घर के बाहर और बालकनी में पौधे लगाएं। तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा, नीम जैसे पौधे हवा को शुद्ध और ठंडा रखते हैं। तो ये उपाय करके हम अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैनू, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि गर्मियों में हम अपने घर को ठंडा किन-किन उपायों द्वारा कर सकते हैं। घर की फर्श पर कालीन और मोटे गलीचे ना बिछाकर सूती या बांस की चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी या लोहे के भारी फर्नीचर की जगह हल्के और खुले डिज़ाइन का फर्नीचर रख सकते हैं। घर में LED बल्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं, ये कम गर्मी पैदा करते हैं। और बहनों, गर्मी के मौसम में कूलर के पैड समय समय पर साफ करते रहें या बदलते रहें ताकि ठंडी हवा मिलती रहे। और AC की अगर है तो AC की सर्विस भी सीज़न में कम से कम 2 बार अवश्य करवाएं। बेडरूम में सूती बेडशीट और तकिए का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहनों, खान पान भी हल्का कम मिर्च मसाले वाला ही खाएं ताकि शरीर का तापमान ना बढ़े। ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। और बहनों, घर की ठंडक केवल तापमान से नहीं बल्कि माहौल से भी जुड़ी होती है। हल्के रंगों की सजावट अपनाएं। खुशबूदार अगरबत्ती या प्राकृतिक खुशबू का प्रयोग कर सकते हैं। हल्का संगीत और साफ सुथरा घर मानसिक शांति देता है, जिससे कि गर्मी कम महसूस होती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों अब बात करते हैं हमारे शरीर के एक बेहद महत्वपूर्ण अंग के बारे में जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं यानी लीवर और जिसे यकृत भी कहते हैं। हमारा खान पान हमारे लीवर को कैसे प्रभावित कर सकता है इस पर चर्चा करते हैं। तो बहनों क्या आप जानती हैं कि लीवर हमारे शरीर का व्यस्त अंग है, सबसे व्यस्त अंग है। ये दिन रात बिना थके काम करता है, खून को साफ करना, पाचन में मदद करना, ऊर्जा जमा करना और शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालना। लेकिन गलत खान पान, जंक फूड, ज़्यादा तेल मसाले और शराब के कारण यही लीवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसलिए लीवर की सेहत का सीधा संबंध हमारे भोजन से है। मैंने लीवर खराब होने के संकेत हमें धीरे धीरे मिलते हैं, जैसे बार बार थकान होना, भूख न लगना, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होना, उल्टी या जी मिचलाने जैसी स्थिति होना और मैंने त्वचा और आँखों का पीला पड़ना, वज़न बढ़ना या अचानक घटना, ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए और अपने खान पान पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

मैंने इस गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे लीवर हेल्थ पर। लीवर के लिए फ़ायदेमंद भोजन है हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों, लौकी, तोरी। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और लीवर को साफ़ रखने में मदद करते हैं। और फल जैसे सेब, पपीता, नाशपाती, संतरा, आंवला, ये लीवर की सफाई और पाचन को बेहद बेहद बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा बहनों, घर का बना सादा खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, संतुलित भोजन भोजन है जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से लीवर डिटॉक्स रहता है। हल्दी का प्रयोग लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह लहसुन भी लीवर को जहरीले तत्वों से बचाने में मदद करता है। और बहनों, लीवर को स्वस्थ रखना हमारे खुद के हाथ में होता है। समय पर और संतुलित भोजन करें, ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें, रोज़ पैदल चलें, हल्की एक्सरसाइज करें या योग करें, दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लें और साल में एक बार अपने स्वास्थ्य की जांच आवश्यक रूप से करवाएं। इस तरह से हम अच्छी देखभाल द्वारा अपने लीवर को स्वस्थ बना सकते हैं।

मैनू आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया, इन सब ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म हमारे हर पल जुड़े रहते हैं। लेकिन इसी सुविधा के साथ एक बड़ी समस्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, फेक और फॉरवर्डेड मैसेज। ये मैसेज कभी डर फैलाते हैं, कभी झूठी उम्मीद देते हैं, तो कभी समाज में भ्रम और तनाव करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम इनसे सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। मैनो फेक मैसेज वे संदेश होते हैं जो बिना किसी सच्चाई या प्रमाण के बनाए जाते हैं, और फॉरवर्डेड मैसेज जो होते हैं जो लोग बिना जांच पड़ताल के एक दूसरे को आगे भेजते रहते हैं। अक्सर इन संदेशों में लिखा होता है, इसे तुरंत सभी ग्रुपों में भेजो, अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो नुकसान होगा। मैनो फेक मैसेज फैलने के कई कारण होते हैं। एक तो लोगों में जानकारी की कमी का होना, और दूसरा जल्दी विश्वास कर लेना, डर या लालच में आ जाना, या सनसनी फैलाने की मानसिकता। और कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैला देते हैं और भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। तो हमें इनसे कैसे बचना है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस गीत के बाद।

मैं नुगीत से पहले हम बात कर रहे थे फेक एंड फॉरवर्डेड मैसेजेस की। तो हम इन मैसेजेस की पहचान कैसे कर सकते हैं? फेक मैसेज से बचने का पहला कदम है पहचान करना। सबसे पहले सोर्स देखें कि मैसेज भेजने वाला है कौन। क्या किसी भरोसेमंद समाचार संस्था या सरकारी स्रोत का नाम है? इसकी भाषा शैली पर ध्यान दें। तारीख और संदर्भ

0: संदर्भ जांचें। कई बार क्या होता है कि पुरानी घटनाओं को नया बनाकर लोग भेज देते हैं, तस्वीरें और वीडियो भी एडिटेड कर सकते हैं। तुरंत विश्वास ना करें, जो मैसेज कहें कि अभी तुरंत शेयर करो, सबको भेजना ज़रूरी है, उन बातों से विशेष रूप से सावधान रहें। बच्चों और बुज़ुर्गों को भी जागरूक करें, परिवार में डिजिटल जागरूकता पर खुलकर बातचीत करें, और याद रखें हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक गलत मैसेज सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। सोचें, समझें और फिर साझा करें, यही डिजिटल युग का सबसे बड़ा नियम होना चाहिए।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: Evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Salim Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in the next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद

0: भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन

0: मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार

0: बिहार का कोची में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से।

लीजिए, सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ों में वक्त की आवाज़ फिल्म का ये गीत। गीत के बोल इंदिवर के हैं और संगीत बप्पी लहरी का।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आनंद मिलन का।

अभी आपने मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को सुना। फिल्म का नाम था मजबूर। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त करने की लक्ष्मी को दे इजाज़त। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कट से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

0: न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामे किलीदी साझेदारी और बाहमी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीके खास मौजूआत हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाक़वामी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन और इमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर जोर दिया है। भारत ने 72 सेहत मराकज और सकाफती विरसों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयाली अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। अमरीकी फौजों ने अबनाए हुरमुज के करीब ईरान के दो हमलावर ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। और क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाइट टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत कर रही हैं। मीटिंग के आगाज पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग 4 साल के वक्फे के बाद हो रही है और इस बात का एतराफ़ करना ज़रूरी है कि इस अरसे के दौरान बाहमी ताल्लुकात में काफ़ी पेशरफ हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के कायम के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं के बारे में तफसीली गुफ्तगू के मुंतजिर हैं, जिसमें सियासी, दिफाई, सिक्योरिटी, बहरी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत व दवासाजी, खुराक की यकीनी फराहमी, सियात, तालीम और सकाफती इश्तराक शामिल हैं। हमारे नामा निगार का कहना है कि भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की 8वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों के दरमियान मुतहरिक जामे किलीदी साझेदारी का जायजा लिया जाएगा और बाहमी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सड़क पार जाती तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मुफाहमतनामे का तबादला किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एच जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तावुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब सुशील खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाक़वामी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन, इमारतों की तामीर और इमलाक की खरीदो फरोख्त पर कड़ी निगाह रखने पर जोर दिया है। जनाब अमित शाह ने त्रिपुरा के सरहदी इलाकों के ताल्लुक से बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर कोर्ट हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िदा एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें ये हिदायत दी गई है। वजीर दाखिला ने ये हिदायत भी जारी की है कि पिछले 5 साल के ज़मीन के रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। जनाब अमित शाह ने कहा कि मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई बाकायदगी से होती रहनी चाहिए और मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली दहाई के दौरान तेल की आलमी मांग में इजाफे में तकरीबन आधा भारत की तरफ होगा, जबकि बिजली की आलमी खपत में इजाफे का 15% हिस्सा भारत का होगा। सेंट पीटर्सबर्ग बैन अलाक़वामी इक्तिसादी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए

रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सरबरा इगोर सेचिन ने कहा कि 2035 तक भारत की तेल की खपत में 44% तक इजाफा होने का तखमीना लगाए गए हैं और इस तरह यह बढ़कर 80 लाख बैरल यौमिया हो जाएगा। उन्होंने भारत को एक क्लीनी साझेदार मुल्क करार दिया और कहा कि तवानाई की आलमी खपत में भारत सरकर्दा रोल अदा करने वाले मुल्कों में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि तेल मार्केट में भारत का एक मुनफरिद मकाम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि यह एहसास मेजर अभिलाषा की शानदार खिदमत और अक़वामे मुत्तहिदा की क़ायमे अमन से मुतालिक कोशिशों में भारत के तवील अरसे से जारी इश्तराक व तआवुन का एक एतराफ़ है। नौजवानों के उम्र और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग से कूड़ा अर्ज साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 77वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया इख्तियार करें। अदाकार विक्रांत मैसी ने भी साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम में हिस्सा लिया और इस पहल को शानदार करार देते हुए कहा कि ये एक तहरीक बन गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता मलयाली अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 साल के थे। वो एक निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। तीन दहाइयों पर मुहित अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में अदाकारी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुद्दाकार अदाकार सलीम कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सलीम कुमार ने अपने शानदार फिल्मी कैरियर के दौरान हमाजैद और यादगार किरदारों के जरिए अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी है। आज दुनिया भर में फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद फूड सेफ्टी को एक मुश्तरका हक और जिम्मेदारी के तौर पर उजागर करना है। साथ ही ये दिन इज्तिमाई तौर पर इकदाम करने का एक बासर मौका भी फराहम करता है। इस साल का मौजू है मसले से हल तक हर जगह महफूज खुराक। ये दिन सफाई सुथराई और खेत से लेकर खाने तक साइंसी तौर तरीकों के जरिए फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने की अहमियत को उजागर करता है। इस मौके पर सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने ज्यादा सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए महफूज और हाइजीनिक खाने के तहत सरकार के अहद का इरादा किया। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून कुछ और इलाकों में आगे बढ़ गए हैं। मौसमियात महकमे के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाज़ हिस्सों, तमिलनाडु के बकिया हिस्सों और शुमाल मशरकी रियासतों में अगले 2-3 दिन के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी राजस्थान और साहली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई को आज 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद ये एक वसी तर इलाकाई बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया जिसमें एक दूसरे पर मिजाइल दागे गए और आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खतरा पैदा हो गया और साथ ही लबनान में फिर से कशीदगी बढ़ गई। इधर अमरीकी मरकजी कमान ने कहा कि अमरीकी फोर्सेज ने आबनाए हुरमुज के ऊपर परवास करने वाले ईरान के 2 ड्रोन्स को मार गिराया। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन की 2026 की सेफ चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय खवातीन की फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेल का मुजाहरा किया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। इसमें जामा क्लीदी साझेदारी और भामी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीके खास मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलावामी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन और इमला

0: के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर जोर दिया है। भारत ने 72 से मराकज और सकाफती वर्षों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। और कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

बाजीगर फिल्म का नगमा अभी आपने सुना कुमार सानू और साथियों का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण को सुनिए, फिल्म का नाम है बेवफा।

प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब सुनिए जनाब रिफत सरोज का तहरीर करदा ड्रामा जिसका उन्वान है दिलों के रिश्ते।

0: की शाम ये तन्हाई, ये लिधर के बहने की नगमा रेज आवाजें, ये देवदार के झूमते दरख्तों से अटखेलियां करती हवा, ये चीड़ के सेहत बख्श झोंके, क्या जन्नत इससे भी हसीन होगी? किसी ऐसे ही माहौल में किसी ने ऐसा कहा है? गर फिरदौस बर रूए जमी हस्त, हमी हस्त हमी हस्त हमी हस्त। आज यहां बरसों बाद आया हूं, एक नशा सतारी है। कितना तरस गया था मैं इस नजारे के लिए।
1: चौकीदार?
2: कौन
1: भाई, यहां कौन ठहरा हुआ है?
2: जी, एक मियां बीबी है।
1: अरे भाई, वो नामाम कुछ मालूम है?
2: मालूम है साहब, बगैर पूरी मालूमात के तो हम यहाँ किसी को ठहरने ही नहीं देते। कोई गुलाम कादर हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: कंट्रोल लाइन के उधर से आए हैं अपनी बीवी के साथ, अमन कारवा के साथ कश्मीर घूमने आए हैं।
1: अच्छा,
2: वो इधर के हैं साहब और उनकी बीवी उधर की है।
1: अरे भाई, तुम तो बड़े होशियार चौकीदार हो। पूरी मालूमात हासिल कर ली है?
2: गेस्ट हाउस के मैनेजर साहब पूरा इत्मीनान करने के बाद ही किसी को यहाँ ठहरने की इजाजत देते हैं। साहब, दोनों मियाँ बीवी बहुत शरीफ हैं।
1: अच्छा अच्छा। अरे भाई, शराफत चेहरे पर नहीं लिखी होती
2: है? कुछ तो कुछ लिखा होता है साहब चेहरे पर, और मेरी बूढ़ी आंखें चेहरे पढ़ सकती हैं।
1: अच्छा अच्छा, सुनो, अगर उनका नाम गुलाम कातिर है तो ये लो, ये मेरा कार्ड उन्हें दे दो।
2: अच्छा साहब, मगर आप कौन है साहब?
1: मैं श्रीनगर के एक अखबार का एडिटर हूँ।
2: ठीक है, ठीक साहब, ठीक। मैं आपको पहचान गया था। आप तो यहाँ कई मीटिंगों में आ चुके हैं।

0: कौन?
1: अरे अरे अरे शाहिदी साहब, अरे गुलाम कादिर, अरे वाह वाह
0: आइए आइए आइए शाहिदी साहब, आइए आइए आइए अंदर आइए अंदर आइए। नफीसा
2: हाँ?
0: इनसे मिलो, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं शाहिदी, जर्नलिस्ट है।
2: अच्छा,
0: और ये है तुम्हारी भाभी नफीसा।
2: आदाब।
3: आदाब भाई, वाकई बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर।
2: अरे तशरीफ रखिए ना।
0: बैठो भाई, बहुत सवेरे सवेरे आ गए।
3: अरे भाई फिर तुम घूमने निकल जाते ना, तुमने मुझे तो आने की इत्तला दी नहीं। देखा ना, मैंने अपने जराए से मालूम किया और तुम्हें ढूंढने का।
0: दरअसल शाहिदी साहब, मैं अपनी इस विजिट को मुस्तहिर नहीं करना चाहता था। इरादा किया कि खामोशी से आऊं, कुछ दोस्तों से मिलूं और चला जाऊं। नफीसा, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, जरा नाश्ते का बंदोबस्त करो।

0: क्यों नहीं अभी?
1: हाँ भाई, तो अब बताओ दोस्त भाई, क्या प्रोग्राम है, क्या टारगेट है तुम्हारा?
2: बोलो बोलो।
3: शाहिदी, तुम्हें शायद यकीन नहीं आया कि मैं सिर्फ अपने माजी से मिलने आया हूं यहां। अरे तुम तो जर्नलिस्ट हो, हर शख्स को शक और शुभा की निगाह से देखते हो। मेरे दोस्त, एक लम्हे के लिए सोचो, क्या जरूरी है कि हर आदमी खुफिया प्रोग्राम बनाकर यहां आए? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो और जानते हो कि मुझे इस जगह से कितना लगाव है। देखो ना, अभी कल ही किसी बात मालूम होती है, हम लोग जिसमें तुम भी शामिल थे कॉलेज के दिनों में यहां किस तरह आते थे और खूब धूम मचाते थे, बैंडबाजी करते थे।
1: अरे मैं क्या याद दिलाया तुमने बाबा।
0: भाई हम बैंडबाजी इस शर्त पर खेलेंगे कि गुलाम कादिर अपने शेर ना सुनाएं।
3: क्यों नहीं,
1: बिल्कुल
3: आपको शेर ही तो सुनने हैं।
1: हाँ भाई, मैं भी शगुफ्ता से मुत्तफिक हूँ भाई, गुलाम कादिर की ये ऊटपटांग शायरी हमारे खेल में नहीं चल सकती।
3: देखो देखो, तुम्हें मेरी शायरी को ऊटपटांग कहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कॉलेज मैगजीन का एडिटर हूँ और कॉलेज के मुशायरों में हमेशा इनाम जीतता हूँ।
0: वो बात अपनी जगह, मगर आज इस वक्त हम आपके शेर नहीं सुनना चाहते।
3: बिल्कुल, जो मिजाज है यार में आए।
2: अच्छा अच्छा भाई, बहस खत्म। भाई मैं और शाहिदी एक तरफ और तुम दोनों एक तरफ, शगुफ्ता और कादिर।
0: अच्छा
2: ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी।
0: क्या?
2: यार कोई घटिया शेर नहीं पड़े जाएंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये मंजूर है, नात के शेर से शुरू करो।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई अर्ज किया है
2: जी।
1: हाँ भाई
2: जी जी,
1: तो अर्ज किया है
2: जी,
1: मोहम्मद हुस्न यूसुफ
2: जी,
1: हर्फ ईसा नूर यज़दा है।
2: वाह, बेशक बेशक।
1: मोहम्मद वजह हस्ती वाई से तखलीक इमकान है।
2: वाह सुभान अल्लाह,
3: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: नून का शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए।
2: क्या बात है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए,
0: पंखड़ी एक गुलाब की सी है।
2: क्या बात है बाबा, भाई शगुफ्ता साहिबा मुलाहिज़ा कीजिए।
0: इरशाद
2: जी, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगु करते।
3: क्या बात है क्या बात है। ये आपने शेर दिया या शगुफ्ता से कुछ कहा?
2: है, अपनी अपनी समझ है।
0: ये का शेर
2: जी,
0: याद थी हमको सभी रंगारंग बज्म आराइयां।
3: वाह
2: वाह,
0: याद थी हमको सभी रंगारंग बज्म आराइयां, लेकिन अब नक्शो निगार ताकि निसियां हो गईं।
1: वाह क्या बात क्या बात। तो भाई अब मीर का शेर अर्ज करता हूँ
2: जी,
1: और खास आपके लिए।
2: क्या बात है क्या बात है।
1: न हम समझे न तुम आए कहीं से, नाम समझे न तुम आए कहीं से, पसीना पहुंचिए अपनी जबी से,
3: पसीना पहुंचिए अपनी जबी से। जी जनाब, क्या मैं इसे छींटेबाजी कह सकता हूँ?
2: जी नहीं, सिर्फ शेर है ये। और पसीना पहुंचिए जबी से अपनी।
0: ये का शेर दिया है।
2: हाँ ये का, ये का
0: सुनिए
2: जी, बताए।
0: यही तो जवाब मोहब्बत था नक्शब।
2: वाह,
0: यही तो जवाब मोहब्बत था नक्शब।
3: बहुत खूब,
0: मेरे शेर उसने मुझे को सुनाए।
2: क्या बात, क्या बात।
1: वो खुलते जाते हैं अब बज्म नाज में। अर्ज किया है
2: जी,
1: यानी वो खुलते जाते हैं अब बज्म नाज में
2: जी,
1: क्या फर्क रह गया भला राजो नियाज में।
2: क्या बात,
0: मेरा ख्याल है मौसम खराब होने वाला है, बादल गरज रहे हैं।
1: हाँ, आज भी हर्फ आरज़ू लब पर ना सका, मौसम बदल गया, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता।
0: चलते चलते अलिफ का शेर
3: जी, फरमाए फरमाए।
0: अभी तो जिंदगी बाकी है किस्मत आजमाने को,
2: अभी तो जिंदगी बाकी है किस्मत आजमाने को,
0: अधूरा छोड़ते हैं दोस्तों अब इस फसाने को।
1: अच्छा भाई, तो शगुफ्ता अब तुम कहवा बनाओ, हम लोग अभी आते हैं।
2: हाँ,
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: बेतबाजी ने बीते दिनों की याद दिला दी। क्या हुआ फिर? अरे शाहिदी, चुप क्यों हो गए?
1: शगुफ्ता बहुत अच्छी लड़की थी, मगर
0: मगर
1: मगर वही हुआ जिसका डर था। मेरा सेकुलर नजरिया और गरीबी आड़े आई। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो कॉलेज की तालीम पूरी किए बगैर अपने वालिदैन के साथ पाकिस्तान चली गई। और उसके बाद
0: उसकी शादी हो गई?
1: शायद नहीं, मगर फिलहाल रस्म-ओ-रिवाज नहीं है। अब रास्ते खुले हैं तो इरादा कर रहा हूँ कि उधर जाके देखूँ। हाँ, तुमसे भी इस बारे में मशवरा करना है।
0: देखो शाहिदी, मैं तो कहता हूँ कि ख्याल अच्छा है। दरअसल ये जुग्राफियाई दूरियां दिलों को दूर नहीं कर सकती, और आजकल तो हालात बहुत साजगार होते जा रहे हैं। अब देखो ना, तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि आ मिले हैं सीना चाकाने चमन से सीना चाक।
2: वाकई कादिर, तुम्हारे आने के बाद तो यह महसूस होता है जैसे यकीनन वो मेल मिलाप और मोहब्बत का जमाना लौट के आ जाएगा।
0: हाँ दोस्त,
2: जब बीते दिनों की उन वाकयात की याद करता हूं तो दिल में एक होप सी उठती है। कैसे कैसे दोस्त थे, वो रमेश कौल, वो मदन काचरू, अरे कितनी रवानी से उर्दू बोलते थे, और बात बात पर इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे।
0: क्या बात है, तुम तो एक जर्नलिस्ट हो, आखिर क्या वजह है कि दूरियां इतनी बढ़ गई हैं?
2: दूरियां कराई गई हैं, मस्नूई हैं। और हाँ, तुम्हें याद है वो जगदीप टिक्कू?
0: जगदीप टिक्कू? हाँ, वो कॉलेज के ड्रामों में हमेशा पीर जी का रोल किया करता था।
3: हाँ, वही, वही, वही,
0: तो पहचानना भी मुश्किल था कि वो हिंदू या मुसलमान।
3: अरे भाई भाई, वही वही भाई, आज तो वो एक बहुत बड़ा लीडर है।
0: अच्छा,
3: और कश्मीरी तहजीब का दिल दादा है। और भाई बिल्कुल सही कहता है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर की कोई तस्वीर मुकम्मल हो ही नहीं सकती।
0: बेशक।
3: पर हाँ, उसने हाल ही में अपने दोस्त, वो क्या नाम है, रहीमुद्दीन डार के साथ मिलकर श्रीनगर में एक फैक्ट्री भी लगाई है।
0: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: अरे भाई, आप लोग बात ही करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी?
0: अरे जरूर खाएंगे।
4: आइए आइए ना, मेज पर गरम गरम चाय और पकौड़े आपका इंतजार कर रहे हैं।
0: आइए शायरी साहब, फिर तो हो जाए चाय और पकौड़ा।
5: भाई दोस्तों, आज की शाम हमारे दोस्त गुलाम कादिर के नाम। आज ऐसा लगता है कि बीता वक्त लौट आया है। श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड की चहल पहल और इस रेस्तरा में हम सब मिलकर वाजवान खाएंगे, ये शाम हमारे सरहद पार से आए हुए गुलाम कादिर और उनकी बेगम नफीजा के नाम। भाई गुलाम कादिर ने तो अपना बचपन और जवानी के दिन यहीं गुजारे। इस रेस्तरा में ना जाने कितनी शामें हम लोगों ने मिलकर गुजारी और वाजवान खाए हैं। और आज खास तौर से इस्तकबाल है नफीजा भाभी का, वो शाहिदी की ही नहीं अपने इस देवर जगदीप टिक्कू की भी मेहमान है, पूरी वादिय कश्मीर की मेहमान है। वो अमन के कारवां की शान बनकर हमारे शहर में आई हैं। उन्हें श्रीनगर का एक एक चप्पा दिखाना है।
4: शुक्रिया टिक्कू भाई, कादिर साहब ने मुझे बहुत जगह बहुत पहले ही दिखा दी हैं। हम पहलगाम में 2 दिन रुके, फिर गुलमर्ग और खिलनमर्ग गए। इन खूबसूरत मकामात के नजारों को मैंने अपने कैमरे में बंद कर लिया है, और अब रावलपिंडी वालों को जाकर दिखाऊंगी। मुझे तो यहाँ के लोगों की सादगी, मेहमान नवाजी और मासूमियत बहुत ही पसंद आई, और शालीमार और चश्मे शाही पर बहुत लुत्फ आया।
5: तो क्या आपने डल झील में शिकारे की सैर नहीं की?
4: अरे कैसे नहीं की, भला उस सैर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। डल झील में शिकारियों की चलती फिरती दुकानों से

0: फल फूल खरीदने का लुत्फ ही कुछ और है। हाँ, और फिर कादिर मुझे चार चिनारी ले गए। वहां हम काफी देर बैठे और बारी बारी चिनारों के साए का लुत्फ उठाया।
1: भाई देखिए, हम आपसे तो शिकायत कर नहीं सकते, लेकिन हम गुलाम कादिर से तो शिकायत कर सकते हैं कि श्रीनगर में अकेले अकेले सैर की और हमें शरीक नहीं किया, हमें मेजबानी का मौका नहीं दिया।
2: अरे भाई तिक्कू, सच्ची बात तो यह है कि हमें यह अंदाजा ही नहीं था कि तुम वादी में वापस आ गए हो।
1: वापस आ गए क्या मायने भाई, ये वादी मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर है। हम कश्मीरी पंडितों ने इस वादी को और हसीन बनाने की कसम खाई है। मैंने यहाँ गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर पश्मीना की शालों की फैक्ट्री भी लगाई है।
3: अरे भाई, हमारे जगदीप टिक्कू तो भाई एक मिसाल है आज के माहौल में, और इनकी वजह से रमेश कौल, हमारा वो पुराना दोस्त, वो हंसी का फुब्बारा, वो क्या नाम है, वो मदन काचरू भी भाई, वो दिल्ली से श्रीनगर वापिस आ रहा है।
2: अरे हाँ शाहिदी, तुम्हें शगुफ्ता का अता पता मालूम है?
3: अब हाँ,
2: तो वो कहाँ है?
3: मेरे दिल में।
2: अरे यार शायरी मत करो, अगर तुम उसका पता बता दो तो मुमकिन है कि नफीसा इस सिलसिले में कुछ मदद कर सके।
0: क्या सिलसिला है?
2: पुराना सिलसिला है।
0: अरे बताइए ना शाहिदी भाई, मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरी खुशनसीबी होगी।
2: नहीं भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा।
0: अच्छा, आप अपनी बेगम से कब मिला रहे?
2: बेगम?
3: बेगम ख्वाब देखा था, मगर ख्वाब की ताबीर कहाँ भाभी साहिबा।
2: यूं कहिए, आपके इश्क में वो सोज और तासीर कहाँ।
3: अरे यार, तुम क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
2: वाह भाई वाह।
0: अब कुछ कुछ आया मेरी समझ में।
2: आ गया ना
3: भाई दोस्तों। अरे भाई, आप लोग खाने के साथ भी इंसाफ करते रहो।
2: चल रहा है, चल रहा है।
0: अभी तो नहीं है। ऐसा लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया।
2: वाकई?
0: बस नाम ही सुना था वाजवान, और आज शेर होकर खा रही हूँ।
3: हाँ तो भाभी, वो शेर किसी शायर ने कह दिया होगा, और ना मैं तो इसे बदसूरत मोड़ ही कहूंगा। एक ऐसा मोड़ जिससे दिलों के फासले नाकाबिले उबूर हद तक बढ़ गए।
0: मुझे आपसे इख्तलाफ है शाहिदी भाई, दिलों में कुर्बत हो तो दूरी हो ही नहीं सकती, फासला होता है सिर्फ जिस्मों में, और दिल एक गोश्त के लोथड़े के अलावा कुछ और भी है। दिल एहसास का दूसरा नाम है। अब बताइए कादिर, क्या मामला है?
2: नफीसा, मैंने आपको बताया तो था, मुझे यही आकर मालूम हुआ कि हमारे ग्रुप की एक बेहतरीन साथी और बेहद शगुफ्ता शख्सियत, यानी शगुफ्ता, जिसने शाहिदी के दिल को गुलजार बना रखा था, वो जमाने की उथल पुथल और हालात के नरगे में आकर पाकिस्तान चली गई।
0: और वहां शादी?
2: नहीं, शादी इसने की ना उसने।
0: तो इंतजार तवील हो गया, क्यों शाहिदी भाई?
3: अरे छोड़िए नफीसा भाभी, ये गुलाम कादिर तो हमेशा ही आसमान में ठिगली लगाता रहा है।
0: इसमें तो कोई शक नहीं, और इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। मुझे इन्होंने अपना बनाकर ही छोड़ा।
2: भाई शाहिदी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें शगुफ्ता से मोहब्बत ही नहीं रही?
3: बेवफा कह के छेड़ने वाले, तूने कुछ और कह दिया होता।
2: अच्छा जी,
1: यानी भाई इधर तो आग बराबर लगी हुई है और उधर क्या हाल होगा?
0: धर्म की खबर तो मैं दूंगी अगर मुझे अता पता मिल जाए। क्यों शाहिदी भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई खबर ही ना हो।
3: भाई वो सुना है, वो इस्लामाबाद के कॉलेज में पढ़ाती हैं।
0: इस्लामाबाद के कॉलेज में? और क्या पढ़ाती हैं?
2: अजी यहाँ तो शाहिदी को ऐसा सबक पढ़ा गई है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा।
0: अच्छा अच्छा, ये तो सच्ची बात है ना कि उनकी शादी नहीं हुई?
3: अब है तो सच्ची, क्योंकि उनके खानदान के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, उनसे कभी कभार उनकी खैरियत मिल जाती है, मगर वो लोग मुझसे कबीला खातिर हैं।
0: मेरा आना जाना इस्लामाबाद रहता है, और जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने उनकी

0: तकरीर सुनी है। अगर ये वही डॉक्टर शगुफ्ता फरीदी हैं, तो उनके बाएं गाल पर एक खूबसूरत सा तिल है।
1: माशाल्लाह।
0: चेहरा किताबी, बाल गुंगराले, आवाज शीरी और कदो कामत के एतबार से न बहुत दुबली न मोटी।
1: अरे अरे भाभी, आपने तो पूरा नक्शा ही खींच दिया।
0: मैं सिर्फ अंदाजे से कह रही हूँ, अगर ये वही शगुफ्ता है तो ये अपने कॉलेज में बहुत मकबूल है। उनसे हमने अपने भाई का रिश्ता दिया था जो बड़ा ही काबिल है।
1: लड़की के वालिदैन को लड़का बहुत पसंद था, मगर लड़की ने यह कहकर बात हवा में उड़ा दी कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो मजीद तालीम के लिए अमेरिका जा रही हूँ।
2: तो वो चली तो नहीं गई अमेरिका?
0: क्या पता।
1: मगर यार, क्या जरूरी है कि ये वही शगुफ्ता हो जो तुम्हारी शगुफ्ता है?
0: सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि अगर ये वही हुई तो आप, मेरा मतलब है आप भाईजान शादी के लिए तैयार हैं?
1: तैयार? अरे ये तो सिर के बल जाएंगे दूल्हा बनकर।
2: मगर इसमें मेरे सिर का खतरा है।
1: क्यों भाई?
2: अरे भाई, इसकी वजह मेरा नजरियाती इख्तलाफ है, और इस इख्तलाफ ने उस वक्त भी मुझे शगुफ्ता से दूर कर दिया था।
3: हेलो हेलो, प्रोफेसर इलियास शर्की है? जी जी जी हाँ, मेरा ख्याल है आप सदारत फरमाएं। मैं? नहीं नहीं शर्की साहब, खैर देखूंगी। जी जी बस मैं चल रही हूँ। सकीना, मेरे जूते जल्दी कर।
4: ये लीजिए।
3: अच्छा, दोपहर को मैं नहीं आऊंगी, शाम को आलू कीमा बना लेना।
4: जी बीबी जी।
3: प्रोफेसर इलियास शर्की साहब और हिंदुस्तान से आए हुए मौजूद मेहमानों, आज का दिन इस्लामाबाद की तारीख में एक अहम दिन है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अदीब, शायर और सहाफ़ी खैर सगाली और बाहमी दोस्ती और इंसानियत का पैगाम लेकर आए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की तारीख एक है, तहजीब एक है। ये खित्ता दुनिया की अजीम तारीख का गहवारा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कदीम तहजीबें हिंद पाक के कदीम और महजब होने की गवाही देती हैं। ये एक खुश आइंद बात है कि खैर सगाली के जज्बे लिए हुए कल्चरल डेलीगेशन इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने लगे हैं। मैं तहे दिल से अपने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करती हूँ। अब मैं इंडियन डेलीगेशन के सरबरा जनाब एस एम शाहरुख से गुजारिश करती हूँ कि दो लफ्ज कहें।
5: हजरात, मुझे तकरीर करनी तो आती नहीं है, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और अपनी बात एक शेर में कहता हूँ। हिंदो पाकिस्तान का दिल एक है, हिंदो पाकिस्तान का दिल एक है, कारवां दो और मंजिल एक है।
0: डॉक्टर शगुफ्ता नर्स,
4: फरमाइए।
0: रावलपिंडी से मैं खास तौर से आपसे मिलने आई हूँ। आपने बहुत अच्छी तकरीर की और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कदीमी और तहजीबी रिश्तों पर रोशनी डाली।
4: शुक्रिया।
0: दरअसल मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ।
4: इस वक्त तो मैं बहुत मसरूफ हूँ।
0: जी,
4: ये मेरा कार्ड लीजिए।
0: जी शुक्रिया।
4: और आज शाम को फ़ोन करके मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, आपके साथ कहवा पियेंगे।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया।
4: आइए बहन,
0: आइए। मैं नफीसा गुलाम कादिर।
4: गुलाम कादिर, कहाँ रहती हैं आप?
0: घबराइए नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, इसी सरजमीन में पैदा हुई। अलबत्ता मेरे शौहर श्रीनगर के रहने वाले हैं और हम लोग अमन कारवां के साथ चंद माह पेशतर श्रीनगर गए थे।
4: ठहरिए, गुलाम कादिर, मुझे सोचने दीजिए।
0: वही जो अपने पेशे के एतबार से एक फोटोग्राफर है?
4: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। मैं तो उन्हें खूब जानती हूँ।
0: जी,
4: मगर पाकिस्तान में उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, उनकी खींची तस्वीरें बहुत देखी हैं।
0: श्रीनगर में तारीखी महफिल जमी थी जिसमें आप शामिल थी, मगर गायबाना। और एक बात अपने तारुफ में कहूँ कि एक साल पहले मेरे भाई

0: आज कुरेशी इनकम टैक्स ऑफिसर का पैगाम आपके लिए गया था, मगर आपने तवज्जो नहीं फरमाई।
1: जी ये बात नहीं है, मैं इजाज साहब की बड़ी इज्जत करती हूँ, मगर मैं शादी ही नहीं करना चाहती।
0: अजीब इत्तेफाक है कि श्रीनगर की उस महफिल में गुलाम कादिर के जर्नलिस्ट दोस्त शाहिदी साहब ने भी यही कहा।
1: शाहिदी, आप उनसे मिली थी, कैसे हैं वो?
0: अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर आपकी तरह शादी ना करने का इरादा किए बैठे हैं।
1: नफीसा, अब मैं समझी कि आप क्या कहना चाहती हैं और क्यों मुझसे मिलने आई हैं।
0: देखिए डॉक्टर शगुफ्ता, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और प्यार तो बिल्कुल ही इत्तेफाक से मिलता है, सिर्फ उसको जिसकी किस्मत में हो। आपको ये दौलत अल्लाह ताला ने अता की है।
1: आपने अचानक बहुत से जख्म ताज़ा कर दिए, काश आप मुझसे ना मिलती।
0: मगर अब तो मिल चुकी हूँ, और डॉक्टर शगुफ्ता, जख्मों का मदावा भी तो किया जा सकता है।
1: बहुत मुश्किल है, आप नहीं जानती ये सरहद की दीवारें।
0: प्यार इन दीवारों से गुजर जाता है। मैं पैदाइशी पाकिस्तानी हूँ और कादिर साहब श्रीनगर से आए हैं, मगर हम दोनों मिल गए और मैं उनको ज़बरदस्ती अमन कारवा में ले गई और श्रीनगर का खुशगवार माहौल अपनी आंखों से देखा, और देखा एक ऐसे शख्स को जो किसी के इंतज़ार में शमा जलाए बैठा है। आप समझ गई होंगी मैं शाहिदी भाई की बात कर रही हूँ।
1: आपने मेरे दिल में एक हिजान पैदा कर दिया, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ?
0: आप अपने वतन वापस जा सकती हैं और अपने रिश्ते जोड़ सकती हैं।
1: मगर मेरे खानदान वाले?
0: वक्त सब जख्म भर देता है, बस जुरती रिंदाना चाहिए।
1: अच्छी बात है नफीसा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए।
0: सोचिए।
2: हेलो हेलो शाहिदी, मुबारक हो।
3: अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो।
4: मुबारक? देखो क्या हुआ भाई, इतने एक्साइटेड क्यों हो?
3: अरे सुनोगे तो तुम भी खुशी से नाचने लगोगे।
4: क्या मतलब?
3: अभी अभी रावलपिंडी से गुलाम कादिर का फोन आया है।
4: क्या?
3: हाँ, वो और नफीसा शगुफ्ता को लेकर आ रहे हैं।
4: क्या क्या कह रहे हो तुम?
3: यही कि दिलों को दूर कर नहीं सकती मस्नूई दीवारें।
4: मगर देखो ये लोग अचानक क्यों आ रहे हैं?
3: ये सवाल तुम कर रहे हो?
4: अब
3: अरे तुम्हारे कानों में बजने लगी पायल की झंकारें।
4: क्या?
3: और हाँ, मैं सुन रहा हूँ शहनाई की आवाज।
4: ओहो तिकू, अरे अरे अरे कमाल की बात कही तुमने, ये सब नफीसा भाभी का कमाल है। वो चौकनियां भरती हुई गजाले राणा को राम कर लिया।
3: और यूं नहीं कहोगे, जज्बाए दिल में असर चाहिए अल्लाह, कच्चे धागे में बंधे आएंगे सरकार मेरे।

अभी आप सुन रहे थे रिफत सरोज का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान था दिलों के रिश्ते। पेशकश थी मोतीलाल कचरू की, और हिस्सा लेने वाले फनकार थे नीरज शर्मा, माला कुमार, राजेंद्र वर्मा, आशा ब्राउन, सतीश महाजन, सतीश कक्कड़ और अली मोतशिम रजा। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाजों में ये था नगमा। फिल्म थी कृष्ण कन्हैया। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक को सुनिए। फिल्म का नाम है प्रेम दीवाने।

फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल।

लता मंगेशकर के साथ ये थे आनंद बख्शी, फिल्म थी मोम की गुड़िया। प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनिए, फिल्म है कुछ मीठा हो जाए।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था सिर्फ तुम फिल्म से। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में है, फिल्म का नाम है खाकी।

0: उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये नगमा था खाकी फिल्म से। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र होंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आपके लिए मेहमत से खबरें सुनिए। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामे क्लीदी साझेदारी और बाहमी इश्तराक को मजीद वसत देने के तौर तरीके खास मौजूआत हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बैन अल-अक़वामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में माली लेन देन और अमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर जोर दिया है। भारत ने 72 सेहत मराकज़ और सकाफती वर्षों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। अमरीकी फ़ौजों ने आबनाए हुरमुज़ के करीब ईरान के दो हमलावर ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें तबाह

कर दिया। और फुटबॉल में भारत ने दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हरा कर रिकॉर्ड छठी मरतबा खवातीन की सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगीओनो मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज़ पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका कमीशन की मीटिंग 4 साल के वक्फे के बाद हो रही है और इस बात का एतराफ़ करना ज़रूरी है कि इस अरसे के दौरान बाहमी ताल्लुकात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं के बारे में तफसीली गुफ्तगू के मुंतज़िर हैं, जिसमें सियासी, दिफाई, सिक्योरिटी, बहरी, तजारती, सरमायाकारी, सेहत, दवासाजी, खुराक की यकीनी फराहमी, सियाहत, तालीम और सकाफती इश्तराक शामिल हैं। हमारे नामा निगार का कहना है कि भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की 8वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों के दरमियान मुतहरिक जाम कलीदी साझेदारी का जायज़ा लिया जाएगा और बाहमी इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफत और नौआबादियाती तारीख है और दोनों मुल्कों ने अपनी आज़ादी के बाद सियासी खुद मुख्तारी, इकतसादी खुद कफालत और आज़ादाना खारजा पॉलिसी के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इकतसादी, दिफा, नीज, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन में खातिर खा इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बाराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडुकेट ऑफ द ईयर से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एजाज मेजर अभिलाषा की शानदार खिदमात और अक़वामे मुत्तहिदा की क़याम अमन से मुतालिक कोशिशों में भारत के तवील अरसे से जारी इश्तराक व ताउन का एक एतराफ़ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाक़वामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में माली लेन देन, इमारतों की तामीर और अमलाक की खरीद व फरोख्त पर कड़ी निगाह रखने पर जोर दिया है। जनाब अमित शाह ने त्रिपुरा के सरहदी इलाकों के ताल्लुक से बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िदा एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यह हिदायत दी गई। वज़ीर दाखिला ने यह हिदायत भी जारी की है कि पिछले 5 साल के ज़मीन के रिकॉर्ड्स की जाँच की जाए। जनाब अमित शाह ने कहा कि मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई बाकायदगी से होती रहनी चाहिए और मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरहदी ज़िलों में माली डिसिप्लिन को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। वज़ीर मौसूफ ने यह हिदायत दी कि कलेक्टरों और GST अहदेदारों को तरबियत दी जाए और बरह रास्त टैक्सों का मरकजी बोर्ड जाली करेंसी के ताल्लुक से सर्वे कराए। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती वर्षों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खानाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जतीी तरसील ज़र को आसान बनाने के लिए मुश्तरक तौर पर UPI इंडिया और नेपाल के UPI को जोड़ने का आगाज़ किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरक तख्लीक से मुतालिक मफाहमतनामे का तबादला किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी ताउन से काम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का एक आला सतही वफद कल 2 रोज़ा दौरे पर आसाम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेगा। इस दौरे का मकसद भारत की शुमाल मशरकी रियासतों के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। इस दौरान बातचीत उन शोबों पर मरकूज़ होगी जिनमें यूरोप और शुमाल मशरकी भारत की मुश्तरका दिलचस्पी है। इसमें काबिल तजदीद और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, पायदार और शहरी बुनियादी ढांचा, सेहत की खिदमत और दवासाजी की सनत शामिल हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वज़ीर डॉक्टर मनसुख माडविया ने कहा है कि साइकिलिंग से कुर्रे अर्ज साफ़ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 77वीं पहल में हिस्सा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता मलयाली

0: अदाकार सलीम कुमार का कल कोची में इंतकाल हो गया। वो 57 साल के थे। वो एक निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। सलीम कुमार ने शुरू में स्टेज पर दूसरे अदाकारों की नकाली करके और टेलीविज़न के कॉमेडी शोज़ के ज़रिए शोहरत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1996 में सिद्दीक शमीर की हिदायत में बनने वाली फिल्म इष्टमनु नूरुवट्टम से अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़मूदाकार और आज़मूदाकार अदाकार सलीम कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सलीम कुमार ने अपने शानदार फिल्मी करियर के दौरान हमाजहत और यादगार किरदारों के ज़रिए अपनी छाप छोड़ी है। आज दुनिया भर में फूड सेफ्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद फूड सेफ्टी को एक मुश्तरक हक और जिम्मेदारी के तौर पर उजागर करना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून कुछ और इलाकों में आगे बढ़ गया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाज़ हिस्सों, तमिलनाडु के बकिया हिस्सों और शुमाल मशरकी रियासतों में अगले 2-3 दिन के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी राजस्थान और साहिली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई को आज 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद ये एक वसी तर इलाकाई बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें एक दूसरे पर मिज़ाइल दागे गए और अबनाए हुरमुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ख़तरा पैदा हो गया। इधर अमरीकी मरकजी कमान ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज़ के ऊपर परवाज़ करने वाले ईरान के 2 ड्रोन्स को मार गिराया। अगली दहाई के दौरान तेल की आलमी मांग में इजाफे में तकरीबन आधा हिस्सा भारत की तरफ से होगा, जबकि बिजली की आलमी खपत में इजाफे का 15% हिस्सा भारत का होगा। सेंट पीटर्सबर्ग बैन अल-अक़वामी इक़्तिसादी फोरम ने इजहार ख्याल करते हुए रूस की तेल कंपनी रोसेनफिट के सरबराह इगोर सेचिन ने कहा कि 2035 तक भारत की तेल की खपत में 44% तक इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है और इस तरह यह बढ़कर 80 लाख बैरल यूमिया हो जाएगा। फुटबॉल में भारत ने ख्वातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मार्गो में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वातीन की 2026 की सेफ चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय ख्वातीन की फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेल का मुजाहरा किया। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया मुश्तरक कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामे कलीदी साझेदारी और बाहमी इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीके खास मौजूदात हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अल-अक़वामी सरहदों से मुतसिल इलाकों में माली लेन देन और अमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर जोर दिया है। भारत ने 72 सेहत मराकज और सकाफती वर्षों से मुतालिक 12 प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं और कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका आज के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से आज की बात के साथ। दोस्तों, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष 7 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का

मुख्य उद्देश्य हम सभी को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आज के आधुनिक युग में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, वितरण और उपभोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसीलिए खाद्य सुरक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। साथियों, आज के समय में खाद्य असुरक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। बाजार से मिलने वाले कई खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है ताकि लाभ अधिक कमाया जा सके। दूध, तेल, मसाले, मिठाइयाँ और पैक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक तत्वों की मिलावट आम बात हो गई है। इसके अलावा फलों और सब्जियों को जल्दी पकाने या चमकदार बनाने के लिए हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अस्वच्छ और मिलावटी भोजन के सेवन से पेट संबंधी बीमारियां, फूड पॉइजनिंग, संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मित्रों, वास्तव में कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि हम सुरक्षित और स्वच्छ भोजन का सेवन करेंगे तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें ये संदेश देता है कि भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए खाद्य सुरक्षा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जीते हैं शान से का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मदरसा आधुनिकीकरण की। श्रोताओं, मदरसों का आधुनिकीकरण आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। बदलते युग में शिक्षा का स्वरूप भी लगातार विकसित हो रहा है। ऐसे में केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रहना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि वहाँ पढ़ने वाले भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। साथियों, मदरसा एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ विद्यार्थियों को इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के साथ साथ अरबी, उर्दू और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी कराया जाता है। भारत में मदरसों की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है और इन्होंने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मदरसों ने सदियों से समाज को धार्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य और संस्कार देने का कार्य किया है। लेकिन समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान, तकनीक, गणित, कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व भी बढ़ गया है। मित्रों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। यदि कोई छात्र केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा तक सीमित रह जाता है तो इसके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। इसीलिए मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करना बहुत आवश्यक है। आधुनिकीकरण के माध्यम से छात्रों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा भी दी जा सकती है। इससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी बढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें समाज में बेहतर योगदान देने के योग्य भी बनाती है। तो श्रोताओं, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए, अब सुनिए फिल्म क्रोधी का ये गीत।

0: चैंपियन नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों आइए अब बात करते हैं रंगीले राजस्थान की। श्रोताओं, हमारा राज्य राजस्थान अपनी वीरता, शौर्य गाथाओं, लोक कला, लोक नृत्य, खान पान, वेशभूषा और लोक संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। हमारा राजस्थान वीरों और शूरवीरों की भूमि है। यहाँ के किले, महल और हवेलियाँ शौर्य गाथाओं के प्रतीक हैं। इन धरोहरों में राजपूताना वैभव और स्थापत्य कला की झलक भी देखने को मिलती है। साथियों, राजस्थान की लोक कला अपनी अलग ही पहचान रखती है। गवरी, घूमर, कालबेलिया और चंग नृत्य यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग है। लोकगीतों में मंगल गीत, पधारो म्हारे देश और मांड यहाँ के लोक जीवन और भावनाओं को प्रकट करते हैं। यहाँ की रंग बिरंगी और आकर्षक वेशभूषा सबके मन को भाती है। मित्रों, हमारे राज्य का खान पान भी इसकी संस्कृति की तरह समृद्ध है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, कचौड़ी और घेवर यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। हमारे राज्य की संस्कृति वास्तव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक उज्ज्वल उदाहरण है। यहाँ की कला, स्थापत्य, भोजन, संगीत और परंपराएं न केवल हमारे देश भारत को गौरवान्वित करती है, जबकि विश्व भर के लोगों को भी आकर्षित करती है। सच कहा जाए तो राजस्थान की संस्कृति भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा है। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। आइए एक बार फिर चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म क्रिश 3 का ये गीत।

वार्मिंग की। श्रोताओं, ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। इसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ये समस्या मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का बढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के चारों ओर रोक लेती हैं। ये गैसें वाहन, कारखानों, बिजली संयंत्रों, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होती है। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव अत्यंत गंभीर है। इससे हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं अत्यधिक गर्मी तो कहीं भारी वर्षा और कहीं सूखा देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव कृषि, जल संसाधन, वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। वाहनों का प्रयोग कम करना होगा और ऊर्जा की बचत करना भी आवश्यक होगा। साथ ही सभी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल एक देश की समस्या नहीं है, जबकि पूरे विश्व की चुनौती है। यदि हम समय रहते इसके प्रति सजग नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए हमें मिलकर पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म कुर्बान का ये गीत।

दोस्तों, राजस्थान भारत का एक विशाल राज्य है जो अपने मरुस्थलीय भूभाग, कम वर्षा और जल की कमी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जल संसाधनों का महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि राज्य के अधिकांश भागों में खेती, पेयजल और औद्योगिक विकास के लिए पानी की उपलब्धता सीमित रहती है। ऐसी स्थिति में नदी घाटी परियोजनाएं राजस्थान के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। श्रोताओं, आइए पहले बात करते हैं इन नदी घाटी परियोजनाओं की, जैसे चंबल नदी परियोजना। मित्रों, ये राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ज्वार सागर बांध और कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की व्यापक सुविधा उपलब्ध हुई है, साथ ही जल विद्युत उत्पादन भी संभव हुआ है। इस परियोजना ने हाड़ौती क्षेत्र की कृषि को नई दिशा दी और वहां गेहूं, चावल, गन्ना व तिलहन जैसी फसलों का उत्पादन भी बढ़ाया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, साथियों, ये भी हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जल परियोजनाओं में से एक है। ये परंपरागत अर्थ में नदी घाटी परियोजना न होकर नहर आधारित बहुउद्देशीय योजना है, फिर भी राजस्थान के जल विकास में इसका विशेष महत्व है। सतलुज और व्यास नदियों के जल को हरी के बैराज से लाकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर के कुछ भागों तक पहुंचाया गया है। इस परियोजना से रेगिस्तान के अनेक क्षेत्रों में हरियाली आई, कृषि भूमि बढ़ी और पेयजल संकट में कमी आई है। तो दोस्तों, अन्य नदी घाटी परियोजनाओं को जानने से पहले आइए एक बार फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं की, जैसे जवाई बांध परियोजना। मित्रों, ये पाली जिले में जवाई नदी पर स्थित है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान के लिए सिंचाई और पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे पाली, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलता है। बिसलपुर परियोजना। श्रोताओं, ये परियोजना बनास नदी पर विकसित की गई है, जो जयपुर, अजमेर, टोंक और अन्य क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज बिसलपुर बांध राजस्थान के कई शहरों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, नदी घाटी परियोजनाओं का राजस्थान के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पहले जहां कम वर्षा और सूखे के कारण खेती अस्थिर थी, वहीं अब सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिला है। कई क्षेत्रों को एक फसल के स्थान पर दो या तीन फसलें उगाई जाने लगी है। जल विद्युत उत्पादन से ऊर्जा की उपलब्धता भी बढ़ी है, जिससे उद्योगों और घरेलू उपयोग दोनों को लाभ हुआ है। दोस्तों, राजस्थान की ये नदी घाटी परियोजनाएं राज्य के विकास की आधारशिला है। जल की कमी वाले इस प्रदेश में इन योजनाओं ने खेती, बिजली, पेयजल और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई दिशा दी है। राजस्थान के सतत विकास के लिए ये नदी घाटी परियोजनाओं सदैव महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो मित्रों, युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब बढ़ते हैं एक गीत की ओर। लीजिए, अब सुनिए फिल्म परदेश का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम का बुरहानपुर में निधन भी हुआ था। इनकी याद में ही शाहजहां ने आगरा में ताजमहल भी बनवाया था। 7 जून के दिन ही सन 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिटबर्ग में स्टेशन पर ट्रेन से फेंके जाने के बाद नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग भी किया था। आज ही के दिन सन 1953 में अमेरिका के बोस्टन शहर में रंगीन टेलीविजन का पहला सफल प्रसारण भी किया गया था। मित्रों, 7 जून के दिन ही सन 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में शुरू हुआ था। आज ही के दिन सन 1539 में बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को भी हराया था। 7 जून के दिन ही सन 2002 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती का निधन भी हुआ था। आज ही के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी हमने कार्यक्रम में चर्चा भी की थी। तो साथियों, युवाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म देवदास का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। लेकिन पहले सुनिए ये संदेश।

श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारी आज के सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सरायकी। संध्या 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। संध्या 7:00 ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे मृदा व वायु संचार, धान की पौध में कीट नियंत्रण, माटी जांच का सही तरीका और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी।

संध्या 7:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। 8:30 पर स्पोर्ट्स के, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत।

श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात 11 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। हमारी आज की ये सभा रात्रि 11:10 पर समाप्त होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सराय की।

एक गीत तुसा सुना है, पसंद आया हो सी? भैनो भिरावो, आजकल खाना बेकार केड़ा थींदा है। घरा विच खाना बहु बनवेंदा है ता खावन आले घट ते खाना सुटना पैसी। हुन शादियां विच तुसा डेदे हो, खाना बहु बर्बाद होंदा है। बहु तरह दे खाने होंदे ते लोग हिक शै घिनदे हिन, थोड़ा जिन्ना खांदे ते बाकी सुट देंदे हिन। इस तरह दावता विच 15 to 20% खावन आली शै बर्बाद थींदियां हिन। दूजे पासे डेदो ता लखां लोगां को दुई जेले दी रोटी नसीब कहनी होंदी। अंकड़े दसेंदे हिन कि दुनिया भर विच हर साल तकरीबन 1.3 बिलियन टन खाना बर्बाद थींदा है। अमरीका विच 30% खाना कूड़ेदान विच सुटेंदे हिन। सोचण दी गल है ते दुए पासे दुनिया दे 7 लोगां विचों हिक नू भुखे सोवना पौंदा ते 5 साल तू छोटे हजारां बाल भुख कारण मर वेंदे। केड़ी अफसोस दी गल है ना। वड्डे ते अमीर घरां विच, रेस्तरां विच, सुपर बाजारां विच खाना ते खाना बनावण दी शै दी बर्बादी आम थी गई है। इस नाल वातावरण भी खराब थींदा है क्योंकि इकट्ठे होवण वाले कूड़े विचों बो आवदी है। वला किसानां दा पैसा, खाद, कीड़ा मारन वालियां दवाइयां, पानी जिन्हां विच फसलां तैयार थींदियां हन, सारा कुछ बर्बाद थी वेंदा। इस नाल बहु भुख्यां दा ढिड भरिया जा सकदा है। इस किते खाने को कदहां भी बर्बाद ना करे सा। घर विच खाना उतना ही बनावन जो जितना खादा वेंदा। बचण ते किसी गरीब को दे देवो। दावत विच प्लेट विच उन्हां ही घिनो जितनी भूख थी वे। घर विच दालां सब्जियां उन्हीं घिना सा जितनी लोड़ थी वे। नहीं ता गल जा सन, कीड़ा लग जा सी ते सुटना पोसी। उंदा लाभ कहनी। ते हुण इक गीत सुनावन जे। बहु वधिया गीत है। ना तू मिल सै, ना दुख मिट सन, ना मैं इजहार कर सकसा।

असर शरीर विच बीमारी लग वंजे, दफ्तर च माहौल चंगा ना थीवना, कारण कोई भी थीवे, डिप्रेशन तो निकलना लाजमी है। इस किते खुश रहना बहुत जरूरी है। उदास ना थीवना, इंदे वास्ते परिवार, समाज, संस्थावां हर एक नू अगू वद के उदासी नाल घिरे इंसान को उभारण दी कोशिश करनी चाहिदी है। साड़ी भी दुआ है कि कोई भी उदास ना थीवे, हर कोई खुश थीवे। प्रोग्राम दे आखिर विच सुनदे हां एक सुफियाना कलाम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरायकी। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय

0: सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि 4 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के संयुक्त आयोग की ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज़ जल डमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख किया। श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: इधर प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में साइक्लिस्ट, फिटनेस प्रेमी, विद्यार्थी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया। इसके साथ ही सप्ताह भर चले जागरूकता अभियान का भी समापन हुआ। वहीं विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली सहित कई स्थानों पर आम नागरिकों सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने साइकिल चलाकर और योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट UG परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। NTA ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि अच्छी शिक्षा देना हमारी

0: उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का पूरे समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा से होता है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री बागड़े आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 23वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गंग नहर निर्माण शताब्दी वर्ष पर जल संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। वहीं केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी काम करवाए जा रहे हैं। लगभग 2,500 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से 300 से ज्यादा गांवों की लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में ये परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर सुधार, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ये परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजातीय बहुल इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। शहरी क्षेत्र के सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को नगर परिषद ने मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल करीब 38.5 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा।
1: सूली डूंगर पर अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। चूंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूली डूंगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं कई क्षेत्रों में तेज गर्मी का दौर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में जहां एक और तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन बेहाल रहा, वहीं घड़साना क्षेत्र में तेज बरसात हुई और 3 GD इलाके में ओले गिरे। बालोतरा में दिनभर लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जैसलमेर में तेज गर्मी के चलते दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। पाली में भी लू और उमस के चलते लोग बेहाल रहे। यहां चिकित्सा विभाग ने आमजन को ORS, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने और जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सिर ढककर निकलने की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल 7 जिलों में बारिश और 2 जिलों में हीटवेव की चेतावनी है। पाली में 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। फाइनल मुकाबला अलवर और जयपुर के बीच हुआ। इसमें जयपुर की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने विजेता और उप विजेता टीमों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने

0: ये आज आखिरी तारीख पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिले की अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात के भुज से सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि पाली, मारवाड़, सोजत रोड, फालना, सोमेसर और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशनों का काम भी प्रगति पर है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 25 मई से 5 जून तक पानी बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने लाखोटिया उद्यान से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दीपदान के कार्यक्रम हुए, जल चौपाल लगाई गई, पानी को बचाने की शपथ ली गई। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बावड़ियों, जल स्रोतों की साफ सफाई सहित जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत के काम किए गए। अभियान के दौरान जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान 2026 की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां रखी गईं, वहीं जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम भी हुए। नगर निगम कार्यालय और जिले की सभी नगर पालिकाओं में इन दिनों लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून तक लगने वाले इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ने, ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। सुगम, सरल और सुरक्षित परिवहन के उद्देश्य से वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम जोरों पर है। प्रगणक घर घर जाकर 33 प्रश्नों के जरिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसे HLO ऐप में दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 14 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। लोगों ने स्वयं ऑनलाइन जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। इस काम में देसूरी ब्लॉक का तिखी गांव जिले में पहले स्थान पर रहा, जहां सभी ग्रामीणों ने खुद अपनी जानकारियां दर्ज कर मिसाल कायम की। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का उद्देश्य नियमित व्यायाम और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करना रहा। इस दौरान साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों खांडी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। पाली कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने किसानों को संतुलित और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग के महत्व की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताकर उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने को कहा। अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से इन दिनों 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही है। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि ये दवा 29 जून तक दी जाएगी। जिले के सभी उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: नमस्कार। आकाशवाणी

0: जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा पुनर्मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा करबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला में आंधी और मेह बरस बारो येलो अलर्ट जारी करियो। समाचार आ रहे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक आज नई दिल्ली में पूरी हुई। इन बैठक री सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया रा विदेश मंत्री सुगियोनो करी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर कया के हाल रा बरसा माए दोनों देशों रे बीच गहरी रणनीतिक भागीदारी हुई। वणा कया के बैठक माए राजनीतिक रक्षा सुरक्षा समुद्री व्यापार जहाजरानी निवेश स्वास्थ्य औषधि निर्माण उर्वरक महताऊ खनिज पर्यटन शिक्षा और सांस्कृतिक समेत द्विपक्षीय इमदाद रा सगला पहलवा माथे गहरी चर्चा वी। दोनों मंत्री बहुपक्षीय समन्वय ने आगे बढ़ावा और भारत आसियान संबंधा ने मजबूत करबा माथे चर्चा करी। इनसु पहली आपरा उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर कया के चार बरस रा अंतराल रे पछे दोनों देशा रा संयुक्त आयोगरी आ बैठक वी है। केंद्र सरकार कयो के अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी री कीमत में भारी बढ़ोतरी रे बावजूद भारत में एलपीजी गैस सबु कम कीमत में मुहैया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक बयान में कयो के भारतीय सिलेंडर किनी भी पड़ोसी देश रे मुकाबले सस्तो है। सरकार कयो के पश्चिमी एशिया संकट रे दौरान समुद्री यातायात में देरी रे बावजूद होमोर्ज जल डमरू मध्य सु ऊर्जा माल री आवाजाही जारी राखबा में सफल रहयो। मंत्रालय मुजब देश में पेट्रोलियम उत्पादारी कोई कमी नहीं है और एलपीजी री बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूपों चल रही है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इन बरसों विषय समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन है। ओ दिन खाद्य सुरक्षा ने एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी रा रूप में मजबूत बनावारो मौको देवे है। इन मौके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रेकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में वणा नागरिकों स्वस्थ खान पान री आदतां डालबा और स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनावा माए योगदान दे बारी अरज करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सोशल मीडिया संदेश माए सगलाऊ सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ कानियू जाग जगाबा और स्वस्थ जीवन शैली ने अपना बारो संकल्प ले बारी अरज करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 77वां कार्यक्रम में भाग लेना। इन मौके केंद्रीय मंत्री कया के साइकिल चलाबासू पर्यावरण ने साख राखबा में इमदाद मिले है। वणा साइकिल चलाबासू स्वास्थ्य में होबा वाला फायदा रो जिक्र करता थका कया के लोगा ने इन पहल में शामिल होर फिट इंडिया रा सपना ने साकार करनो चाहिए।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: वठी नए प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम विया। राजधानी जयपुर में फिटनेस पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन ने बढ़ावो दीवारा लगासू साइक्लोथॉन राखी गई। इनमें बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट फिटनेस प्रेमी पढ़निया कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिक भाग लीना। इन आयोजन में स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता रो संदेश दियो गयो। इन सागे ही सप्ताह भर चल रियो जागरूकता अभियान भी पूरो वियो। वठी ने विद्या नगर स्टेडियम में साइकिल रैली काढ़ी गई।

0: गंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली समेत कई ठोड़ा माथे लोगा समेत पुलिस अहलकार और कर्मचारी साइकिल चला लोगा ने फिट रह बारो संदेश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई री 12वीं कक्षारा परीक्षारा नतीजा जारी हो बारे पछे इनसु जुड़िया मुद्दारी जांच और उत्तर पुस्तिकावा ने फेरो जांच मा खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कर बारी आज आखिरी तारीख है। बोर्ड रा सोशल मीडिया पोस्टर मुजब ये पोर्टल आधी रात तक खुलिया रहेला। इन भी सरकारी कानू नीट यूजी परीक्षा ने साफ कोई तरीकाओं कराबा खातर सगला सुरक्षा उपाय पक्का करिया जा रिया है। ये परीक्षा 21 जून ने वेला एनटीए सोशल मीडिया माथे चाल री पेपर लीक और उनरी बिक्री सु जुड़ी बाता नकार दियो है। वणा पढ़ानिया और उनरा घराला सु इन बेबुनियाद माथा माते भरोसो नी कर बारी सलाह दी है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े कया के चोखी शिक्षा देणो मां की सबू पहली प्राथमिकता वैनी चाहिए। वे कया के ज्ञान रो पूरा समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा सु होवे है। इन खातर सगला ने मिलर उन्ने चोखो बनानो चाहिए। श्री बागड़े आज लोक भवन सु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर 23वां स्थापना दिवस माते संबोधित करिया हा। इन मौके वणा गंग नहर निर्माण शताब्दी बरस माते पानी बचा बारो संकल्प ले बारी आरज करी। केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस री शुभकामनावा देता थका विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति सु जुड़िया मूल्यां माते काम कर बारी जरूरत जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना ने सर्वोच्च प्राथमिकता देता था कहां जरूरी काम करवाया जा रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपया की लागत इन परियोजनाओं 320 गांवों की करीब 42000 हेक्टेयर कृषि भूमि ने लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों पानी मुहैया वेला। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कया के आवता बरसा माए आ परियोजना बांसवाड़ा जिलारी खेतीरी माली व्यवस्था ने नई दिशा देबा वाली खास सिंचाई परियोजना माए भेली वेला। इन रो पूरो होबारे पछे किसाना ने साल भर खेती खातर पानी मिल सकेला। कया के इंसू जमी माए पानी रो स्तर सुधरेला, पानी री बचत वेला और गांवाई हलकारा विकास ने मजबूती मिलेला। सागई आ परियोजना बागड़ हलका रा जनजाति बहुल इलाका रा सामाजिक और माली विकास माए मील रो पत्थर साबित वेला। जैसलमेर माए पर्यटन ने बढ़ावो दे बारी तैयारी शुरू हो चुकी है। सहरी हलकारा सूली डूंगर सनसेट पॉइंट ने नगर परिषद मॉल रोड री तर्ज माए बना बारी खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपत लाल सिंह सोढ़ा बतायो कि इन प्रोजेक्ट सु नगर परिषद ने हर बरस करीब 38,50,000 रुपया रो राजस्व मिलेला।
1: सुली डूंगर में अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। चूंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया है जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूली डूंगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में मौसम रो मिजाज लगातार बदल रही है। एक और कई जिला में आंधी चालबा और मेही बरस बसु लोगों ने गर्मी और उमस से राहत मिली तो वठी ने कई हल्का में तेज गर्मी आप रोक कहर बरसा रही है। प्रदेश रा श्रीगंगानगर बालूतरा जैसलमेर पाली में तेज धूप और गर्म हवा चालबा से आम जीवन बेहाल है। वठी ने घड़सामा माए तेज बरसात रह सागे ओला पड़वारा समाचार है। चिकित्सा महकमो तेज गर्मी रे चालता आमजनों ORS नींबू पानी छाछ सेवन करवा और घरासों से ढाकर 12 आबारी सलाह दी है। मौसम महकमो आज 12 जिला में आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। इनरे इतर काल 7 जिला में बरसबा और 2 जिला में हीट वेव री चेतावनी दी गई है। पाली माए 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी होड़ आज पूरी हुई। फाइनल मुकाबलो अलवर और जयपुर के बीच हुयो। इन माए जयपुर की टीम 3-1 सो जीत दर्ज करी। समापन जलसा माए मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संघ रा अध्यक्ष

0: अरुण कुमार सारसत विजेता और उपविजेता टीमा समेत चोखो प्रदर्शन करबावाड़ा खिलाड़िया ने इनाम दीना। उपभोक्ता मामलात महकमा रा ई जागृति मंच ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिले हुए ओ सम्मान तकनीक रे जरिए सरकारी प्रक्रिया में सुधार और डिजिटल काम खातर दियो गयो है। उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कयो के ई जागृति उपभोक्ता शिकायतारा तुरंत निपटारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रियो है। इन बरस 1 जनवरी ने शुरू कराया गया ईआई आधारित मंच माथे हाल ताई 229,032 उपभोक्ता मामला रो पंजीकरण करियो गयो जतके 207,032 मामला रो निपटारो करियो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला ई सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माथे 26 जून तई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप माए और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए भी आपरा विचार भेजा जा सके है। और अब आखिर माए खास खबरें एकर फेरू। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग री बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कराबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला माए आंधी और मे बरसबारो येलो अलर्ट जारी करियो। इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो महाको आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तुत करता है राजन मुदगल।

कार्यक्रम सुननिया सगले परिवारा ने भाई राजन का घना घना राम राम, मोकला मोकला राम राम सा। भाई लोगों आपा सगला के खेती खड़ मिणक हाँ, और आपा ई बात ने भी अच्छी तरीका में जाना कि आपने जी की खेती है बिना आपा ज़्यादा सफल बनाने खातर, ज़्यादा भी मैं मुनाफो लेने खातर आपा कई बारी भांत भांत का जी का प्रयोग आपकी खेती में आपा करता रहा। कदे कदे आपने भी ऊँ फायदों मिले तो कदे कदे थोड़ो नुकसान भी हो जाए, पर अगर समय के हिसाब में देखा और बड़ा बुजुर्गों की राय ने मानता हुआ चला तो जीवन में वो ही व्यक्ति ज़्यादा सफल हुआ है, सफलता का आयाम छुआ है जिको बदलाव ने स्वीकार करे और बदलाव के सागे आगे बढ़े है। खेती पाती की आपा अपने कार्यक्रम में चर्चा करांगा, और अब आज बात करा आपा माटी को जिको वायु संचार है बिंगे बारे में। माटी भाई लोगों आपने पौधा की अच्छी भड़वार और अच्छे विकास को एक मुख्य आधार है। माटी में पानी, वायु, खनिज पदार्थ और कई तरीका का जैविक तत्व पाया जावे। जित्ती आपने मिणखा खातर और जित्ता भी जलचर थलचर आकाश में घूमन आला, जित्ता भी पशु पक्षी है, जमीन पर रहन आला जित्ता भी जीव है, और हालांकि आपने मानव प्रजाति भी में शामिल है, सबका खातर वायु बहुत जरूरी है। और आई हवा आपने फसल खातर, अपनी जमीन के खातर भी बहुत जरूरी है। पौधा की जी की जड़ा हुए बामें माटी में रहने वाला जितना भी सूक्ष्म जीव हुए

बने भी जीवित रहने खातर आपको काम करने खातर के है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहे। माटी के कणा के बीच में रहने वाला जितना भी खाली जगह है बैठे वायु को जी को संचार है आवागमन है वो ही माटी का माँ वायु संचार कहलावे। अगर आप अंग्रेजी की बात कर देवा तो इन्हें आप कह देवा सोइल एरेशन। माटी में वायु संचार को की मतलब हुआ अगर आप आ बात करा तो माटी के कणा के बीच में के कई बार छोटा छोटा जिका छिद्र हुए बांगमाओं के हवा प्रवेश करे और बठोई धीरे धीरे बाहर निकले इन्हें माटी का माँ वायु संचार कह देवा आप। अच्छी वायु संचार वाली जी की माटी है भाई लोगों भी मैं के ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे और कार्बन डाइऑक्साइड भी सागे सागे बाहर निकलती रहे। माटी में अगर अच्छो वायु को संचार हुएगो तो अपने किके फायदा हुएगा और माटी में वायु को के महत्व है अगर इनकी बात करें तो सबू पहले तो बूंटा आपा जिका भी लगान लाग रहे हैं बांगी जिकी भी जड़ा है बांगी अच्छी श्वास क्रिया खातर ऑक्सीजन की जरूरत बने पड़े और बैबिंग उपयोग करें तो अच्छी वायु संचार होना के है कि जड़ों का विकास अच्छो हुए तो सबू पहलू फायदों तो अपने हो कि जड़ों के अच्छा विकास खातर सांस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना भी माटी का माँ रहने वाला लाभकारी जीवाणु है या और भी कोई सूक्ष्म जीव है बने कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग खातर और पोषक तत्वों की उपलब्धता खातर के माटी में जिकी अपनी वायु को संचार है वो काफ़ी सहायता करे इंग खातर देखा तो सबू ज़्यादा ऑक्सीजन जरूरत पड़े। पोषक तत्व जितना भी आप अपनी फसल में देवा या जमीन गमा जितना भी उपलब्ध हुआ है तो बांगो प्रयोग करने खातर बने शोषण खातर भी अच्छो वायु संचार होना बहुत जरूरी है। पानी की जिकी निकासी है बिंग माँ भी सहायता लेने खातर जिकी वायु संचार है बा माटी बहुत ही बढ़िया मानी जाए। इनके अलावा सबू जरूरी बूंटा की जिकी अच्छी बढ़वार खातर आ माटी सबू ज़्यादा बढ़िया मानी जाए क्योंकि अच्छी ऑक्सीजन मिल रहा उनके बूंटा की वृद्धि बूंटा को विकास और उत्पादन है वो भी बढ़िया हुआ है। माटी में वायु संचार ने प्रभावित करने वाला कई कारक हुए हैं जिनमें माटी की जिया बनावट होगी बड़ोई माटी है जिनमें माटी पानी को हवा को संचार काफ़ी ज़्यादा हुआ है जबकि चीकनी माटी में थोड़ू कम हुआ है। माटी की जिकी संरचना है बिंग आधार पर भी जिको हवा को संचार है वो प्रभावित हुआ है। दानेदार और भुरभुरी माटी में जिको हवा को संचार है वो अच्छी तरीका हुआ है। पानी की मात्रा की बात करा ज़्यादा पानी भरने वाली जिकी भी माटी है बिंगा छिद्र के पानी भर जावे और वायु संचार भी में धीरे धीरे कम होने लग जाए। और भी जिका कार्बनिक पदार्थ है जिका आप अपनी फसल गमा डालें जिया गोबर की खाद है कंपोस्ट खाद है तो आने डाले के कि माटी भुरभुरी बने और हवा को जिको संचार है वो माटी गमा बटे। बात करें आप कि अपनी खेत की जिकी माटी है बिंगमा हवा को संचार बढ़ाने खातर अपने किसान भाई के कुछ कर सके है तो सबू पहले और सबू जरूरी खेत की अच्छी और गहरी आपा जुताई करा। गहरी जुताई माटी एक तो भुरभुरी हुए और हवा को जिको आवागमन है वो भी बटे है। जैविक खादा के प्रयोग के है अपने गोबर की खाद है जिया कंपोस्ट खाद है हरी खाद है आप सब चीज़ों को अगर आप उपयोग करेंगे तो माटी की जिकी संरचना है भी में सुधार हुआ है। पानी निकासी की जिकी उचित व्यवस्था आप करांगा तो के है कि आपने माटी की हवा जिकी संरचना है भी सुधरेगी हवा को संचार भी अच्छो हुआ। नियमित निराई गुड़ाई अगर आप करता रहा तो बीओ बी के माटी की ऊपरी सतह है जिकी बा ढीली हो जाए और हवा को संचार है वो बढ़ने लग जाए। खेत में कोई भी प्रकार को अनावश्यक भारी मशीना का उपयोग आप कम करा तो बीओ भी माटी सख्त को नहीं हुआ है। कदे कदे देखा आपा कठे कठे जिकी वायु संचार की कमी है तो बिंग कारण के है कि जिकी भी फसल आपा बैठे लुका रखी है बिंग जड़ांग विकास रुक जाए पौधा धीरे धीरे पीला पड़न लाग जाए पोषक तत्वों को अवशोषण धीरे धीरे कम हुआ और लाभकारी जितना भी सूक्ष्म जीव है बांगी गतिविधियां भी धीरे धीरे घटन लाग जाए मूल तौर पर देखा तो फसल उत्पादन में भी कमी आ जाए। तो माटी गमा जिको वायु संचार है भाई लोगों वो कोई भी फसल की कोई भी बूंटा की स्वस्थ बढ़वार खातर सबू ज़्यादा जरूरी है। वो बूंटा की जड़ा का अच्छा श्वास खातर
सूक्ष्म जीवांगी सक्रिया खातर और पोषक तत्वों

अवशोषण में काफी भूमिका निभा रहे हैं। गहरी जुताई हूँ, जैविक खादों को अच्छा उपयोग करे हूँ, पानी की निकास की अच्छी व्यवस्था कर गए और निराई गुड़ाई को पूरा ध्यान रख का पा अपनी माटी में हवा संचार ने बढ़ा सका हाँ। अच्छी हवा संचार वाली माटियों के फसल उत्पादन के सागे सागे जिकी भी फसल आपा लेन लाग रहा बिंगी गुणवत्ता में भी बढ़वार हुए। अगली बात आपने किसान भाई जरूर ध्यान रखे, बड़ा कार्यक्रम में आगे की तरफ और सुनावा था ना वो भजन लियो सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश पहला भाई लोगों सुने हो आपा भजन चला कार्यक्रम में आगे की तरफ और बात करा धान की फसल जिकी भी आपने किसान भाई लगा रखी है या धान की पौध जिका आपने किसान भाई तैयार करने लग रहा है तो भी मैं कीट नियंत्रण समुचित तौर पर आपा क्या कर सका हाँ। आपने भारत की अगर प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करा तो धान को नाम हमेशा सबों पर आवे हैं। अच्छी उपज प्राप्त करने खातर एक स्वस्थ और मजबूत बूटा को होना बहुत ही जरूरी है। धान की नर्सरी अवस्था में कई कीट पौधा ने नुकसान पहुँचावे जिका उनके कि बूटों कमजोर हो जाए और मुख्य खेत में रुपाई के बाद के उत्पादन है जिको वो भी प्रभावित हो जाए। इन खातर नर्सरी में टाइम टाइम पर आपा कीट नियंत्रण कर सका हाँ। धान की पौध ने नुकसान पहुंचाने वाला कुछ प्रमुख कीट हुए हैं जी मैं बात करा आपा पत्ती लपेटक की जिन्हें आपा लीफ होल्डर के नाम भी जाना हाँ। वो कीट पत्तियां न मोड़ गए अंदर को हरे भाग है वो खाने लग जाए और प्रभावित पत्तियां धोली पड़ जाए धीरे धीरे सूखी दिखाई देने लग जाए। तना छेदक कीट की आपा बात करा तो इंगी सुंडियां पौधा गए तना में प्रवेश करके अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देवे और पौधा को जिको बीचलो भाग है वो धीरे धीरे सूखन लग जाए जिन्हें आपा डेड हार्ट के नामों भी जाना है। भूरे फुदका की बात करा तो बूंटा को रस चूस है और ज़्यादा प्रकोप होने पर भाई लोगों पौधा धीरे धीरे सूखा पड़न लग जाए और अपनी जिकी उपज है बिंगो पर बिंगो अनुचित प्रभाव पड़े। हरे फुदका की बात करें भाई लोगों तो वो रस चूसन आलो कीट रस चूसन के सागे सागे विषाणु रोग भी फैलावे हैं। धान को हिस्पो वो पत्तियां की ऊपरी सतह ने खुर्च के नुकसान पहुंचाना शुरू कर देवे और पत्तियां पर धोली धारियां आपने दिखाई देने लग जाए। इन कीटा के नियंत्रण खातर आपने किसान भाई सबों पहले तो मूल आपकी एक शपथ ले लेवे कि जब भी आपा फसल लगावा या धान की पंजीरी जद भी आपा उगावा तो स्वस्थ बीज को आपा उपयोग करांगा। प्रमाणित और रोगमुक्त बीज को आपा जद प्रयोग करा तो भाई लोगों आदि समस्या तो अपनी बी टाइम ही खत्म हो जाए और बीजोपचार करके जद आपा आपको बीज लगावा तो फसल की बढ़वार अवस्था में आने वाली कई समस्याएं अपनी कम हो जाए। इनके अलावा बात करें आपा संतुलित उर्वरक प्रबंधन भी अपने खातर बहुत जरूरी है तो ध्यान रखा पा नाइट्रोजन उर्वरक को बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करा और संतुलित मात्रा में उर्वरक बताई अनुसार मात्राओं प्रयोग करता रहा। नज़दीक का आपा कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जागे आपकी फसल खातर कितना जैव उर्वरक और कितना रासायनिक उर्वरक कितनी मात्रा में आपने किस समय देना है वो सारी जानकारी आपा लिस का। इनके अलावा भाई लोगों खेत की जिकी सफाई है बापा बिंगो पूरा ध्यान रखा खरपतवार ने टाइम टाइम पर हटावा और खेत के आसपास की जगह में भी आपा पूरी सफाई रखा। लाइट ट्रैप जिन आपा प्रकाश प्रपंच के नामों भी जाना हाँ रात में आपा बिन लगा के हानिकारक कीटा ने आकर्षित कर सका हाँ और बने धीरे धीरे नष्ट कर जा सके हैं। फेरोमेन ट्रैप को भी आपा प्रयोग कर सका हाँ जिया तना छेदक वर्गा जितना भी कीट है बांगी निगरानी और नियंत्रण खातर फेरोमेन ट्रैप काफ़ी उपयोगी है। जैविक नियंत्रण की बात करा तो नीम आधारित जितना भी उत्पाद है बांगो आपा उपयोग कर सका हाँ। लाभकारी कीट और परजीवी है बांगो आपा संरक्षण करा। रासायनिक नियंत्रण की बात करा तो जे कीटा को प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर जितो है ब्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपा कृषि वैज्ञानिका की सलाह के अनुसार बताईड़ी जितनी मात्रा है बी हिसाब हूँ कीटनाशकों को आपा प्रयोग कर सका हाँ। छिड़काव करता

मापा जितना भी सुरक्षा उपाय है बांगो भी पालन जरूर करा। कीट नियंत्रण अगर आप समय पर कर लेवा तो आपने कई प्रकार का भी फायदा मिले। एक तो स्वस्थ और मजबूत पौधा अपनी फसल खातर तैयार हुए, दूसरो पौधा की जिसकी बढ़वार है वह भी काफ़ी अच्छी हुए। आगे बढ़वार अवस्था में रोगों का प्रकोप काफ़ी कम हो जाए। मुख्य खेत में रुपाई के बाद आपने बहुत बढ़िया उत्पादन मिल रहे हैं और मूल रूप में देखा तो अपना किसान परिवार की आय में भी आपने बढ़ोतरी दिखने मिले। तो ऐसा गला फायदा तो आप लेवा पर कुछ सावधानियां भी आपने रखनी जरूरी है। जी हाँ, कीटनाशकों का उपयोग जद भी करा आप जरूरत पड़े जद ही करा। जितनी बताईड़ी मात्रा है बिती बताईड़ी मात्रा को ही आप प्रयोग करा। छिड़काव करता टाइम सावधानियां बरता, जी हाँ दस्ताना मास्क और सुरक्षा खातर कपड़ा पहरा। छोटा बच्चा है या पशु है बने छिड़काव वाली जगह आप दूर रखा। धान की नर्सरी में भाई लोगों कीट नियंत्रण फसल उत्पादन की दृष्टि में देखा तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ बीज, खेत की स्वच्छता, जैविक उपाय और अच्छे कीट प्रबंधन

या उत्पादन मिल रहे हैं। और मूल रूप में देखा तो अपना एक किसान परिवार की आय में भी आपने बढ़ोतरी देखने मिले हैं। तो ऐसा गला फायदा तो आप लेवा, पर कुछ सावधानियां भी आपने रखनी जरूरी है। जिया कीटनाशकों का उपयोग जद भी करा आप, जरूरत पड़े जद ही करा। जितनी बताईडी मात्रा है बित्ती बताईडी मात्रा को आप प्रयोग करा। छिड़काव करता टाइम सावधानियां बरता, जिया दस्ताना, मास्क और सुरक्षा खातर कपड़ा पहरा। छोटा बच्चा है या पशु है बने छिड़काव वाली जगह आप दूर रखा। धान की नर्सरी में भाई लोगों कीट नियंत्रण फसल उत्पादन की दृष्टि में देखा तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्वस्थ बीज, खेत की स्वच्छता, जैविक उपाय और अच्छे कीट प्रबंधन ने आप अपना गए कीटा पर प्रभावी नियंत्रण कर सका। टाइम टाइम पर करड़ी कोई भी देखभाल है, ब्यू के स्वस्थ पौध तैयार हुए और धान की जी की उपज है भाभी काफ़ी बढ़िया आपा ने मिल रहा है। अगर आपा भाई लोगों थोड़ी सी समय पर सावधानी अपना गए, आगे आने वाला टाइम पर अच्छो उत्पादन ले सका और अच्छो आपने मुनाफा मिल जावे, तो कुछ सावधानी आपने समय रहते बरत लेनी चाहिए। और कोई भी प्रकार की आपा अगर जानकारी लेना चाहवा तो भी जानकारी खातर आपा कृषि वैज्ञानिकों भी संपर्क कर सका हाँ। चला कार्यक्रम में आगे की तरफ और सुनावा थाने एक गीत लियो, सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश से पहला भाई लोगों सुनियो आपा गीत। चला एक बार फिर हूँ खेती पाती की तरफ और बात करा अपना। कई किसान भाई ऐसा है जकांगा बड अजय बेला पड़ा है और कोई भी प्रकार की फसल की बीजांत बैजे कोनी करी है। बांग खातर भाई लोगों वो बिल्कुल सही टाइम है माटी जांच कराने को, क्योंकि अपने खेत की जिकी माटी है बा कृषि उत्पादन को आधार है। फसलों ज़्यादा और गुणवत्तापूर्वक उत्पादन आपने लेन खातर माटी की उर्वरता शक्ति और पोषक तत्वों की जिकी भी स्थिति है बिंगी जानकारी होनो बहुत जरूरी है। माटी जांच कराएं के आ जानकारी आपने मिले और माटी में किसा किसा पोषक तत्व उपलब्ध है और कुछ पोषक तत्वों की जिकी कमी है बांगी भी आपने जानकारी मिल जाए। ये आधार पर किसान परिवार के उर्वरकों को संतुलित उपयोग कर सके हैं। बात करावा माटी जांच के महत्व की, भाई आपा क्यों करावा माटी की जांच। कदे कदे किसान भाइयों का मन में आ जावे कि भाई इनकी जानकारी तो माने है, इतना साल हो गया माने खेती पाती को काम करता ने, तो मैं क्यों करावा माटी की जांच। माटी जांच कराना भाई लोगों एंग खातर जरूरी है कि आपने माटी की उर्वरा शक्ति को पता चले। आवश्यक जिका भी उर्वरक है जिका की सही निर्धारित मात्रा अपनी माटी में मौजूद है बंगो आपने ठा पड़े। उत्पादन लागत कम क्यों होने लाग रही है बिंग बारे में आपने जानकारी मिले। फसल उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुए। जमीन गमा किसा पोषक तत्व कितनी मात्रा गमा उपलब्ध है, किसा पोषक तत्वों की कमी है एंगू भी आपने माटी जाँच के माध्यम ही पतो लागे। जमीन की जिकी दीर्घकालीन उर्वरता है बिना बनाए रखने खातर माटी जांच आपा जरूर करावा और अनावश्यक उर्वरक के प्रयोग आपा माटी जांच करावा तो बच सका है। तो चला एक कड़ी में आ गए और बात करा कि माटी को नमूनो आपा की तरीका सही ढंग ले सका है। जब भी आपने किसान भाइयों का बड बेला हुआ है तो फसल कोई भी लगाया हूँ पहले आपा माटी की जाँच करा सका है। खेत में कोई भी प्रकार को उर्वरक डाले हूँ पहले हर साल आपा माटी की जांच करा सका है, नहीं तो कम उकम दो साल में तो आपा एक बार जरूर माटी की जांच करा लेवा। माटी को नमूनो लेन की जिकी विधि है बिंगी बात करें तो कुछ जरूरी चीज़ आएंगे खतर आपा ने चाहिए हुआ है, जिया खुरपी या फावड़ो, साफ बाल्टी, एक साफ प्लास्टिक कुमेनियों या कोई थैलो और एक लेबल या कागज। माटी को जिको नमूनो लेन खातर आपने अगर एक समान जमीन आलो खेत लेनो है तो आपा नमूनो एक जगह ले सका है और जे खेत के अलग अलग भागों आपने माटी लेनी हो है तो आपा अलग अलग नमूनो भी ले सका है। नमूना लेन की जिकी गहराई है बा सामान्य फसलों खातर लगभग 15 सेंटीमीटर तक आपा ले सका है और बागबानी जिकी अपनी फसलें हैं बांग खातर 30 सेंटीमीटर गहराई तक भी आपा नमूनो ले सका है। अगर आपने जरूरत पड़े तो इम ज़्यादा गहराई तक भी आपा जा सका है। नमूनो लेन खातर भाई लोगों आपने खेत में आपा जिग जैग तरीका 8-10 जगह चुन लेवा और हर जगह आपा वी आकार को एक गड्ढो खोद लेवा। एक किनारों लगभग 2-3 सेंटीमीटर मोटी माटी की जिकी परत है वह आपा निकाल लेवा और जितना भी नमूना अपना लेड़ा है सारा नमूना ना आपा अच्छी तरीका साफ बाल्टी में मिला लेवा। आ सब को आपा एक मिश्रित नमूनों तैयार करा, जितनी भी माटी है बिना अच्छी तरीका मिलावा, पत्थर जड़ा और अन्य जिका भी अवशेष है बना आपा हटा देवा। मिश्रित माटी ने 4 भागा में बांट गए, 2 भाग हटा देवा और आ प्रक्रिया आपा जब तक दोहरावा जब तक लगभग आधा किलो माटी ना बच जाए। बिंग बाद सब जरूरी काम भाई लोगों थैली के ऊपर आपा जरूर कुछ जानकारी लिखा, जिया किसान भाई को नाम जिको जानकारी खातर आपके खेत की।

माटी भेजन लाग रहे हैं, किसे गांव वापस भेजन लाग रहे हैं। अभी गांव को नाम, खेत को नंबर या खेत की पहचान, नमूनों के तरीका ले रहे है अभी नमूना लेने की विधि, और आगे प्रस्तावित फसल किसी है कि भाई आप आगे कौन सी फसल आपके खेत में लगानी चाहवा। बिंग बाद आपा लेडो जी को नमूनों है अभी ने कृषि विभाग या माटी परीक्षण खातर प्रयोगशाला में जांच खातर भेज देवा। माटी जांच रिपोर्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मिले, जी हाँ आपने जमीन को पीएच मान कितो है, आपनी जमीन क्षारीय है या अम्लीय है, विद्युत चालकता कितनी है, कितना जैविक कार्बन आपने जमीन में मौजूद है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की कितनी मात्रा आपने जमीन में है, और अगर कमी है तो कितनी कमी है, जिंक आयरन सल्फर आदि जी का सूक्ष्म पोषक तत्व है कितनी मात्रा में आपने जमीन का माँ विद्यमान है। इनके अलावा देखा आपा तो माटी जांच का आपने किसान भाई कई फायदा ले सके, जिया संतुलित उर्वरक का आपा उपयोग कर सका। हाँ जब आपा माटी जांच को नहीं करावा तो आपने ई चीज़ को ज्ञान को नहीं हुआ कि किस उर्वरक आपने कितनी मात्रा में आपने खेत का माँ प्रयोग करना है। माटी जांच कराए हूँ आपने बिल्कुल पूरी जानकारी मिल जाए कि ओ उर्वरक आपने इतनी मात्रा में अपने खेत में ई टाइम पर देना है। इनके अलावा माटी जांच कराए हूँ कि आपा जब सही संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो आपने ज़्यादा उत्पादन मिल रहेगा, माटी की जिसकी उर्वरता शक्ति है बिंगमा सुधार आवागो, पर्यावरण संरक्षण होगा क्योंकि आपा अनावश्यक संतुलित अनावश्यक उर्वरक का आपा उपयोग कोनी करने लाग रहे हैं तो आपनों पर्यावरण है वो भी संरक्षित रहेगा, और सब जरूरी बात आपने खेती की जिसकी लागत है बिंगमा भी कमी आवेगी। बस इमें ध्यान आपने किसान भाई एक ही चीज़ को रखा है कि उर्वरक डालड़ा स्थान वहाँ पर नमूनों ना लेवा, आसपास की कोई नालियाँ हैं, कोई मेड़ा है या पेड़ के नीचे को स्थान है या जठे गोबर को ढेर है बी जगह वहाँ पर नमूनों ना लेवा। नमूनों लेन खातर आप हमेशा साफ उपकरण का उपयोग करा और गिल्ली माटी को नमूनों कदे भी ना भेजा, पहले बिना अच्छी तरीकों छाया में सुखा लेवा, बैंग बाद आपा नमूनों लेन खातर माटी ने भेजा। माटी जांच कराए हूँ कि है कि वैज्ञानिक खेती की जिकी अवधारणा है बिना समझ के आपा बिंग ऊपर आगे बढ़ सका हाँ, और सही तरीकों लेडो जिको माटी को नमूनों ही सटीक जांच और सटीक परिणाम आपने दिवे। माटी परीक्षण के हिसाबों के आपा उर्वरक को संतुलित उपयोग करा और किसान परिवार आपको उत्पादन बढ़ा सके, लागत धीरे धीरे कम होने लग जाए और जमीन की जिकी उर्वरता है वह भी लंबे टाइम तक बनी रहे। तो इनके खातर हर किसान भाई ने नियमित रूपों आपकी खेत की माटी जांच जरूर कराते रहना चाहिए। हर साल अगर आपा ना करा पावा तो कम 2-3 साल पर तो आपा अपने खेत की माटी जांच जरूर करावा। कोशिश करा आपा हर साल जब अपना बड़बेला हो जावे तो बिंग बाद आपा माटी जांच करवा लेवा। चला कार्यक्रम में आगे की तरफ और सुनावा थाने अगली प्रस्तुति लियो सुनो सा।

भाई लोगों, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा देशभक्त होने के नाते आपने कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी बने हैं। आपने राष्ट्रहित खातर अगर आपने कुछ अच्छी आदतें अपनानी पड़े तो जरूर आपने अपनानी चाहिए। बात करा अगर कुछ अच्छी आदतें में, तो सबों पहले नंबर आवे है ईमानदारी को। अपने राष्ट्र की उन्नति खातर हर नागरिक को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। इन कड़ी में आगे देखा तो कुछ और अच्छी आदतें भी आप अपना गए अपने देश की तरक्की खातर योगदान देश का हाँ। जी हाँ, करांगो भुगतान आपा टाइम पर करा। देश की अर्थव्यवस्था ने मजबूत बनाने खातर जिका भी अपना कर है वांगो आपा ने सही समय पर भुगतान करना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं को आपा उपयोग करा। देश की अर्थव्यवस्था ने बढ़ावा देने खातर और मजबूत बनाने खातर आपा मेक इन इंडिया ने जरूर अपनावा। शिक्षा ने बढ़ावा देवा, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही राष्ट्र निर्माण की नींव हुए। जद भी आपा ने समय मिले वृक्षारोपण आपा जरूर करा और आपने पर्यावरण की रक्षा करा। पर्यावरण संरक्षण आपने राष्ट्र की दीर्घकालिक भलाई खातर बहुत जरूरी है। सब जरूरी भाई लोगों, समय को पालन करा, क्योंकि समय को सदुपयोग कोई भी व्यक्ति और देश दोनों की प्रगति में बहुत सहायक हुए। सामाजिक सौहार्द बना के रखा आपा, कोई भी धर्म जाति या भाषाओं ऊपर उठ के एकता और भाईचारा ने बढ़ावा देवा। मतदान जब भी आपने अवसर मिले जरूर करा, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक अपने देश खातर सही नेतृत्व चुन गए वोट जरूर देवे है। सड़क नियमों को आपा पालन करा। छोटी छोटी है कई इसी जिम्मेदारी हैं जिकी आपने राष्ट्र की सुरक्षाओं जुड़ी हुए है। और आखिर में देखा तो स्वच्छता

जरूर अपनावा, क्योंकि स्वच्छ भारत हुई स्वस्थ भारत और शक्तिशाली भारत बने हैं। चाला कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ सुनाओ थाने लियो सुनो सा।

भाई लोगों, ये गीत के सागे ही आज गो चौपाल कार्यक्रम अठे संपन्न करण की भाई राजन ने आज्ञा दियो। राम राम सा राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म ताजमहल से ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत साहिर का है और संगीत रोशन का।

श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ताजमहल से ही गीत, आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है शर्मिली। गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने और सुरों में ढाला है ST बर्मन ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म इज्जत से ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ जोन AIR पर। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म जुदाई के कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, जुदाई 1997 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन राज कंवर द्वारा किया गया और मुख्य कलाकार अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर हैं। कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सैयद जाफरी सहायक भूमिका में शामिल है, जबकि पूनम ढिल्लो ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की है। श्रोताओं, यह फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लग्नम की रीमेक थी। यह श्रीदेवी की अंतिम फिल्म थी, जब तक कि उन्होंने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से अपनी वापसी नहीं की। रिलीज होने पर फिल्म 1997 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफल फिल्म बनी। श्रोताओं, फिल्म के बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे, पहले सुनवाते हैं इसी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

शुद्ध हम फिल्म के कलाकारों पर बात करें तो अनिल कपूर ने इस फिल्म में राज वर्मा का किरदार निभाया था। श्रीदेवी ने काजल, उर्मिला मातोडकर ने जानवी साहनी और सैयद जाफरी ने श्री साहनी। इसके अलावा कादर खान ने काजल के पिता का रोल निभाया था। फरीदा जलाल ने काजल की माँ। जॉनी लीवर, जो कि हैरी नाम से प्रसिद्ध है, उसने इस फिल्म में काजल के भाई की भूमिका निभाई थी। परेश रावल ने हंसमुख लाल की, उपासना सिंह ने हंसमुख लाल और हैरी की पत्नी की भूमिका निभाई थी। श्रोताओं, फिल्म की कहानी पर बात करें तो जब काजल यानी श्रीदेवी पेशे से इंजीनियर राज यानी अनिल कपूर से शादी करती है तो वह और उसके पिता यानी कादर खान स्वचालित रूप से मानते हैं कि वह अमीर है। यहाँ तक कि दो बच्चों के जन्म और विवाह के कई सालों में भी वह नहीं बदलती। इसका एक उदाहरण तब होता है जब काजल अपनी पुरानी सहेली निशा से मिलती है। निशा का रोल निभाने वाली थी इसमें पूनम ढिल्लो। जब निशा से मिलती है तो उसे कहती है कि उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसके परिवार के पास कई कारें और बंगले हैं, लेकिन निशा जो वास्तव में अमीर होती है उसे काजल की सच्चाई पता चल जाती है।

एक दिन जब जानवी यानी उर्मिला मातोड़कर राज के मालिक साहनी यानी सईद जाफरी की भतीजी जब विदेश से आती है, वह हवाई अड्डे पर राज से मिलती है और मानती है कि वह कार चालक है। उसके बाद वह उसे उसके सामान के साथ सड़क पर फेंक कर छोड़ जाता है और परवाह किए बिना ही उसके मालिक क्या कहेंगे। जानवी समय पर अच्छी तरह से कार्यालय पहुंचती और राज के रवैये की प्रशंसा की। जब वह जानती है कि वह विवाहित व्यक्ति है तो वह तब भी राज से शादी करने के लिए अटल है। श्रोताओं, फिल्म की कहानी पर और भी बात करेंगे, सुनवाते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, राज के हम फिल्म की कहानी पर बात कर रहे हैं तो राज के शादीशुदा होने के बाद भी जाह्नवी उससे प्यार करने लगती है। वह पहली बार एक दुकान पर काजल से मिलती है जहां वे दोनों राज के लिए कैसेट प्लेयर खरीदने जाते हैं। परिवार जाह्नवी का दिया हुआ टेप सुनता है जिसमें वो अपना प्यार कबूल करती है। राज से शादी करने के प्रयास में जाह्नवी शहर के गणेश मंदिर के अंदर लालची काजल से मिलती है। वह राज के विवाह के बदले में 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश करती है। तब काजल इसे धन और आसान जीवन पाने का अवसर मानते हुए अचानक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। काजल ने समझौते के लिए राज को मजबूर कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करने के लिए राज और जाह्नवी को विवाहित करवाकर खुद राज को तलाक दे दिया। यह सोचकर कि वह और जाह्नवी खुशी से साथ रहेंगे और राज को साझा करेंगे, उसके बाद वह सौदा में मिले धन का उपयोग एक विशाल हवेली और कई कार खरीदने के लिए करती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का निकलता है। तब काजल ने उसे ताना मार कर कहा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, जबकि निशा के सपने अब सब कुछ खोने के बाद टूट गए हैं। निशा ने काजल को याद दिलाया कि उसने अपना घर और संपत्ति को अपने बीमार पति के इलाज के लिए बेच दिया, जबकि काजल ने अपने पति को धन के बदले बेच दिया है और कुछ हद तक काजल उससे और भी करीब है। काजल ने खुद को प्रभावयुक्त व्यक्ति में ढाला और इससे अपने परिवार की उपेक्षा कर रही। राज शुरुआत में काजल द्वारा खारिज किया गया महसूस करता है और जाह्नवी के करीब नहीं गया, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी के साथ मिलता रहता है, जो उन्हें प्यार और स्नेह के साथ देखती है। वह खुद को बदलती है और एक सामान्य भारतीय गृहिणी बन जाती है। श्रोताओं, फिल्म की कहानी पर और भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं एक और गीत।

शो तुम ऐसा भरी आरामदायक जिंदगी में जब काजल को पता चलता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर चली गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जन्मदिन की पार्टी रखती है, यह महसूस किए बिना कि राज कभी भी भव्य जीवन शैली के लिए आकर्षित नहीं हुआ है और इस तरह उसे जाह्नवी की ओर धकेल रही है। काजल सुधरने की कोशिश करती है, जब कुछ भी काम नहीं करता तब काजल जाह्नवी को थप्पड़ मारती है और उसे अपने पति को चुरा लेने का आरोप लगाती है। तब वह जाह्नवी को घर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राज ने जाह्नवी के साथ जाने का फैसला किया। बच्चे भी जाह्नवी और उनके पिता के साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर काजल अपने परिवार को छोड़कर चले जाने से व्याकुल हो जाती है, अपना सभी धन दान कर देती है। जब वह जानती है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वह हवाई अड्डे पर जाती है। वह उन्हें जाने से रोकना चाहती है, लेकिन आखिरी मिनट में जाह्नवी राज को

बता देती है कि वह अकेले अमेरिका के लिए जा रही है। लेकिन वह सचमुच अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की उम्मीद लिए भी जा रही है। तो श्रोताओं, फिल्म काजल के साथ अपने परिवार को वापस आने और जाह्नवी के हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जाने के साथ समाप्त हो जाती है। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, फिल्म के सभी गीतों को समीर द्वारा लिखा गया था और सुरों में ढाला था नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की कुल लागत थी 6 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने कमाए थे 28 करोड़ रुपए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म थी जुदाई। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों में जो खास खबरें रखी हैं उनके बारे में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताएंगे। तो जो आज की हेडलाइंस हैं उन पर नजर डालते हैं। अलेक्जेंडर ज़वरेव और फ्लेवियो कोबोली के बीच फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स फाइनल जारी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। भारत ने उलान बटोर ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल खिताब जीता। फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से पराजित किया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पकड़ और मजबूत की। पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 451 रन आगे। और संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण का देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजन। खेल, सिनेमा और राजनीति की दिग्गज हस्तियां शामिल। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ज़वरेव अपने करियर का 4था और कोबोली अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक ज़वरेव ने पहला सेट 6-1 से जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चवालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
1: 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में माया चवालिंस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसी के साथ 8वीं वरीयता प्राप्त रूस की खिलाड़ी साल 1992 में मोनिका सेलेस के लगातार तीसरा खिताब जीतने के बाद से पेरिस में सबसे युवा महिला सिंगल्स चैंपियन बन गई हैं। स्टेड रोलैंड गैरोस में 1 घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में इस युवा खिलाड़ी ने 6-3, 6-2 से बाजी मारी। एंड्रीवा ने पूरे खेल में शानदार संयम दिखाया जो उनके खेल की पहचान बन गया। उन्होंने लगातार 9 गेम जीतकर मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। कड़े मुकाबले वाले शुरुआती सेट से आगे बढ़कर उन्होंने 6-3, 5-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने युवा करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता और फ्रेंच ओपन के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जीत के बाद एंड्रीवा ने कहा कि इस टूर्नामेंट को जीतना हमेशा से उनका सपना रहा है।
2: Congrats to Maya for these amazing 3 weeks, passing through qualis, winning so many matches, beating so many great players. Congrats to your team as well. You're a very tricky opponent. I wouldn't want to play against you one more time. So I wish you the best of luck for the rest of the season and hope we play many, many more finals together in the future. I want to thank myself for believing in myself, always giving my

0: 100% even when it's tough.
1: जीत के बाद भावुक आंद्रीवा जश्न में कोर्ट पर गिर पड़ी और फिर अपनी कोच पोंचिता मार्टिनेज को गले लगाया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 और 1994 की विंबलडन चैंपियन मार्टिनेज ने आंद्रीवा के खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: और अब बात करते हैं कुश्ती की। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के ओसिम जान दस्तान बेग और विक्की ने 97 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के गंगख्यान गनबटेर को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारत ने 7 वर्ष बाद सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। गोवा के मडगांव में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार इस खिताब पर कब्जा किया। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
3: भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 7 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए फाइनल में भारतीय टीम ने आत्मविश्वास से भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को खेल के हर मोर्चे पर शिकस्त दी। मैच के 42वें मिनट में प्यारी खाखा ने पहला गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ के अंतिम क्षणों में बांग्लादेश की ऋतुपूर्णा चकमा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के शुरू होने के सिर्फ 40 सेकंड ही हुए थे कि भारत की सनफीदा नोंगरम ने ब्लू टाइग्रेस को फिर से बढ़त पर ला दिया। इसके बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिंडा कॉम सर्टो ने 82वें मिनट में गोल करके मेजबान भारत की जीत पक्की कर दी। इसके बाद जैसे ही खेल समाप्ति की सीटी बजी, भारतीय टीम और उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। पूरे टूर्नामेंट में प्रमुख भूमिका निभाने वाली सनफीदा नोंगरम घुटनों के बल बैठ गई और अपनी साथी खिलाड़ी डैंगमी ग्रेस को गले लगाया, जिन्होंने मैच के बाद संन्यास की घोषणा की। साल 2013 में अपने करियर की शुरुआत के बाद से भारतीय महिला फुटबॉल की इस दिग्गज खिलाड़ी ग्रेस ने 95 बार देश का प्रतिनिधित्व किया और अपना तीसरा सैफ खिताब जीतकर शानदार अंदाज में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा। यह जीत मेजबान टीम के लिए एक शानदार अभियान का समापन थी, जिसने अपने 4 मैच जीते। इस दौरान 18 गोल किए। अविका सिंह 4 गोल के साथ प्रतियोगिता की शीर्ष स्कोरर रही। सनफीदा नोंगरम को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, जबकि पंथोई चानू इलांगबम को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। नेपाल की टीम ने फेयर प्ले पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई नेताओं तथा खेल प्रेमियों ने भारतीय महिला टीम को एक ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: और श्रोताओं, फुटबॉल के बाद अब आप लोग ले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान में। न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.747 सेकंड के समय के साथ रजत पदक अपने नाम किया। ये उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले कल शैली सिंह ने लंबी कूद और महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
4: न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जीत का सिलसिला जारी है। भारत की महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ नया मीट रिकॉर्ड भी बना लिया है। श्रावणी नंदा, एसएस नेहा, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की टीम ने ताइवान के बानकियाओ स्टेडियम में शानदार 44.07 सेकंड का समय निकालकर पोडियम में शीर्ष स्थान पर अपना कब्जा जमाया। इस दौरान भारतीय टीम ने पिछला मीट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिले में जीत के अलावा लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। शैली ने 6.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया और अपने प्रतियोगी से आगे रहीं। उन्होंने मीट में भारत की पदक तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ा। भारत के तेजस सिरसे ने भी ट्रैक पर प्रभावित किया और पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता। इससे पहले भारतीय विमेंस रिले टीम ने भी अंडर 20

0: एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां भारत ने रिकॉर्ड 19 मेडल जीते थे। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान पर पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में अफगानिस्तान ने आज 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। तो सुनते हैं मैच के दूसरे दिन का हाल।
2: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी मेजबान भारत के नाम रहा। भारत ने अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 368 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत को दिन का पहला झटका अपना शतक पूरा कर चुके कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो 177 गेंद में 126 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने भी 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 81 रन की पारी खेली, जबकि वाशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाने के बाद अपनी पारी घोषित कर दी। इससे पहले मैच के पहले दिन केएल राहुल ने शानदार 100 रन की पारी खेली थी। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सैफी ने 6 विकेट, जबकि जियाउर रहमान और हशमतुल्ला साहिदी ने 1-1 विकेट लिया। इसके बाद भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अभी भी भारत से 451 रन पीछे है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बात रविवार के दिन साइकिल पर फिटनेस की सवारी की। आज देश भर के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल के आयोजन में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर फिट रहने का संदेश दिया।
3: विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में किया गया। इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया, अभिनेता विक्रांत मैसी, मुक्केबाज नुपुर शोराण और एक्टर मॉडल रागनी द्विवेदी शामिल हुई, जिन्होंने साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज संडे ऑन साइकिल का 77वां संस्करण है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एक पहल से शुरू हुई यह मुहिम आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।
4: संडे ऑन साइकिल का आज 77 एडिशन है। जो पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था, तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज देश में 10,000 स्थान पर हुई। देश के नागरिकों को एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आसानी से उपलब्ध होती है और कई समस्या का समाधान हो? ये साइकिल है। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप मेंटली फिट रहते हैं, फ्यूल का बचत होता है, प्लेनेट शुद्ध रहती है। तो इतनी सारी चीजें एक साइकिलिंग करने से समाधान देती है, तो क्यों ना हम साइकिलिंग करें।
3: फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि रविवार की यह सुबह उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद दिला गई। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों का फिट रहना बेहद आवश्यक है।
5: 1.5 साल से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, संडे को साइकिल का, हर हफ्ते होता है, कई शहरों में होता है। आज के दिन अगर आप पूछे तो कम से कम 400 शहरों में चल रहा है। तो देखिए, सेहत के बारे में सब जानते हैं कि रियल सक्सेस इज गुड है, और सक्सेस के महीने बदलते रहते हैं, पर ये एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलेगी। तो प्लीज फिट रहें, और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे।
3: इस अवसर पर मुक्केबाज नुपुर शोराण ने भी साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। नुपुर ने कहा कि सभी लोगों को अच्छी सेहत के लिए समय निकालकर 10 से 15 मिनट साइकिल जरूर चलानी चाहिए।
6: संडे और साइकिल जो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जो मैंने आज यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी, उससे पता चलता है कि लोग कितने जागरूक है आज के टाइम पे फिजिकल फिटनेस के लिए। और साइकिलिंग तो मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज है, फिजिकल भी फिट रहते हैं और मेंटली भी बहुत पीस मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालनी चाहिए साइकिलिंग के लिए।
3: दिल्ली के अलावा मुंबई, भोपाल, जम्मू और बीकानेर में भी लोगों ने सुबह साइकिल की सवारी करते हुए फिटनेस का संदेश दिया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चर्चा योगासन की। गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता

0: के बारे में हमारे संवाददाता ने बताया है कि सबसे अधिक पदक जीतकर भारत तालिका में शीर्ष पर है।
1: पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने कुल 30 मेडल जीतकर मेडल टैली में अपना दबदबा बनाए रखा है। इसमें कुल 24 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, जबकि सिंगापुर 6 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। योग में जबरदस्त स्किल, डिसिप्लिन और बेहतरीन प्रदर्शन करके भारतीय योगा खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया और इस खेल में ग्लोबल लीडर के तौर पर देश का रुतबा मजबूत किया। इस चैंपियनशिप में 75 देशों के 500 से अधिक योगा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 4 जून से शुरू हुए इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप का कल आखिरी दिन है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: और इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 254 रन का लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 138 रन पर ही सिमट गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रुक के 56 रन की पारी के बावजूद पहली पारी में 140 रन बना सकी थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड पहली पारी में 113 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 27 रन की बढ़त मिली थी और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में एमिलो गे के 57 रन की मदद से 256 रन बनाए थे। और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स फाइनल खेला जा रहा है और इस प्रतियोगिता में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव और इटली के फेवियो कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। तो श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्पोर्ट्स कैन इसी तरह आप सुनते रहें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो sportscan@sportscan.air@gmail.com पर भेजें। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति

0: केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है।

0: यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान

0: जान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defence, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
2: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defence and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral fora. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Mr. Paul said, Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार थे चंदन दास। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी।
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किस

0: किसी निजी मीडिया प्लेटफार्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था, तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 24 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were.
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मनिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
2: Fabulous gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले, बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुँचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के

0: लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
1: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी, तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था, और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे, और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे, क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात ये थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
2: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
0: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
5: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
6: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है, और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
2: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
0: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे। तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सकें। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
7: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था,

0: कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहां इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे। आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे प्रोग्रामर हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे। और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी। मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी। हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे। और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस

0: जादुई आवाज को
1: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे वो चौकर है वहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूब सुरती साजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। कि खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
2: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुँचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
0: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
0: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।

0: कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
1: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई, जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूं, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
0: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल, जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है, तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
0: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

0: Sabha. Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy.
1: Sri M.V. Subbarayadu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri MSN Murthy sangeet ke parivesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki siksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की. बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया. इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है. आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है. आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं. आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है. आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है. आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला.
0: श्री एमएसएन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगैन अर्ली. हिज मदर श्रीमती एम जलजाक्षी इज अ वेटरन वोकलिस्ट. रेकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री एमएसएन मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ संगीत साहित्य कलानिधि श्री NCH कृष्णमाचार्यलु. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri MSN Murthy

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है खर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राजमार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रवि वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: unites the nation. The minister added that he prayed to the deity for the well-being and prosperity of all. Indian wrestlers continued their impressive run at the Ulaanbaatar Open in Mongolia today, winning 2 gold and 2 bronze medals in the men's freestyle category. Deepak clinched the gold medal in the 61 kg category, defeating Kazakhstan Asil Atkan 6-0 in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद।